ये आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है, FM 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।

विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने विभिन्न पक्षों के बीच मौजूदा सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयास जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने विभिन्न पक्षों के बीच मौजूदा सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर भी बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। भारत की उनकी ये पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक की अध्यक्षता की। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को कल से अगले वर्ष 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए सभी आवश्यक प्रबंध कर लिए गए हैं। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था कल भगवती नगर आधार शिविर से रवाना होगा। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। श्री मनोज सिन्हा अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। 57 दिन की यात्रा पारंपरिक नुनवान पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले के बालतल मार्ग से 3 जुलाई को शुरू होगी। उत्तर रेलवे ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए विस्टाडोम विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन 2 महीने के लिए कम कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आमतौर पर कटरा और बडगाम रेलवे स्टेशनों के बीच चलने वाली विस्टाडोम रेलगाड़ी आज से 31 अगस्त तक या अगले आदेश तक सिर्फ बनिहाल और बडगाम के बीच चलेगी। ये फैसला जम्मू कश्मीर पुलिस से मिली सुरक्षा जानकारी और सुझावों के आधार पर लिया गया है। रेलवे ने 200 करोड़ रुपए

0: अगस्त से दक्षिण पूर्व रेलवे में शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाने को मंजूरी दे दी है। इससे रेलवे का डिजिटल संचार नेटवर्क मजबूत होगा। इस परियोजना से दक्षिण पूर्व रेलवे के 4 बड़े संभाग में 1600 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में 48 फाइबर ओएफसी कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन और दीव तथा राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है। इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह बनाई। अब नॉर्वे का मुकाबला रविवार को ब्राजील से होगा। मोरक्को, पैराग्वे, ब्राजील और कनाडा भी राउंड 16 में पहुंच चुके हैं। राउंड 32 के एक अन्य मैच में आज शाम मेक्सिको का सामना इक्वाडोर से होगा। आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है। आइए अब सुनते हैं मुंबई के अंदर से विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

साथियों सुनिए आज का चिंतन। जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं, और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। ये था आज का चिंतन। और अब सुनिए वंदन वार में भक्ति रचनाएं।

कलाकार बांसुरी वादक पंडित रोनू मजूमदार, संवादिका ममता सिंह है, संपादन सहायक झरना सोलंकी और प्रस्तुति अनुश्री पाठक, कलाकार बांसुरी वादक पंडित रोनू मजूमदार। सुबह 7 बजे आप सुनेंगे भूले बिसरे गीत और 7:30 पर हम है राही प्यार के। कार्यक्रम त्रिवेणी आप सुनते हैं सुबह 8:15 पर और पुनः दोपहर 2 बजे। आज त्रिवेणी में आलेख एवं स्वर है ममता सिंह का। कार्यक्रम चित्रलोक आप सुनेंगे सुबह 8:30 पर और शाम को 8:15 पर। आज की फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित रहेगा संगीतकार सी अर्जुन पर। आलेख एवं स्वर

बट आप सुनेंगे टसर या घीचा सिल्क साड़ी, झारखंड की मशहूर। शब्द हमारे और आपके में सुनिएगा प्रतियोगिता के बारे में और व्यंजन पकोड़े, पकोड़े के बारे में बातचीत होगी संवादक मंदाकिनी जोशी और आरती श्रीवास्तव। शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत आज के मेहमान में आप सुनेंगे वरिष्ठ साहित्यकार हरिशंकर राठी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का भाग एक। छाया गीत शाम 5 बजे 5:30 पर तराने नए पुराने। 6:30 पर आप फिर से सुनेंगी झरोखा और 6:35 पर संध्या रंजन। फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला आप सुनते हैं शाम 7 बजे 7:45 पर आज इंद्रधनुष में राग अनुराग। 8 बजे हवा महल के अंतर्गत सुनिएगा नाटिका के अंतर्गत झलकी दिवा स्वप्न, मनुभाई देसाई का लेखन है, निर्देशक सत्येंद्र शरत। 4G साथियों का कार्यक्रम जयमाला आप सुनते हैं शाम 7 बजे 7:45 पर आज इंद्रधनुष में राग अनुराग। 8 बजे हवा महल के अंतर्गत सुनिएगा नाटिका के अंतर्गत झलकी दिवा स्वप्न, मनुभाई देसाई का लेखन है, निर्देशक सत्येंद्र शरत। कार्यक्रम आपके लिए रात 9 बजे 10 बजे छाया गीत आलेख एवं स्वर मंदाकिनी जोशी का, 10:30 पर ढलती जाए रात और 11 बजे रंग तरंग का पुनः प्रसारण। तो ये थी रूपरेखा हमारे आज के कार्यक्रमों की। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए अब प्रस्तुत है रामचरित मानस गान का आज का अंक 236 आप सुनेंगे।

भरत के पीछे पीछे अयोध्या और जनकपुर से आए स्वजनों के विदा होने का करुण अवसर है। सबको विदा करने का अच्छा दिन है ऐसा जानकर भी श्री राम को उनसे कुछ कह सकने में संकोच होता है। उपस्थित समाज उनके इस शील के सम्मुख नतमस्तक है। श्री राम की मनोदशा से भरत को अपनी उद्गार निवेदित करने की प्रेरणा मिलती है। अग्रज ने उनकी हर रुचि को मान दिया है, किंतु भरत ये सोचकर व्यथित हैं के कारण श्री राम, लक्ष्मण तथा जनक नंदिनी ने कितने संताप और कष्ट सहे हैं। अतः अब वो आज्ञा मांगते हैं और जिस प्रकार के आचरण से उन्हें श्री राम के चरणों के दर्शन फिर प्राप्त हों ऐसी सीख की याचना भी करते हैं।

0: मानव हृदय के उन भावों की अभिव्यक्ति देती है जिन्हें शब्दों में बांध पाना संभव नहीं होता। इसकी ध्वनि में मिट्टी की सोंधी सुगंध और जनमानस की सरल भावनाएं समाहित रहती हैं। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में आज से आरंभ हो रही है एक नई श्रृंखला। शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। आमंत्रित कलाकार हैं, अपनी विलक्षण साधना और अद्भुत प्रस्तुति शैली के माध्यम से बांसुरी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। आइए सुनते हैं इस श्रृंखला की पहली कड़ी।
1: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आज से हम नई श्रृंखला का आरंभ कर रहे हैं, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। बांसुरी की तान जब छिड़ती है तो हम जैसे सुर सरिता में अवगाहन करते हैं, मन दीन दुनिया से बेबर होकर साधना में लीन हो जाता है। पद्मश्री पंडित रोनू मजुमदार, जिनका पूरा नाम रणेंद्र भानु मजुमदार है, आप भारतीय संगीत जगत के ऐसे अनुपम साधक हैं जिन्होंने अपनी बांसुरी की मधुर तान से शास्त्रीय, लोक और फिल्म संगीत तीनों धाराओं को अद्भुत सौंदर्य प्रदान किया है। उनकी बांसुरी से निकलने वाले स्वर मानो प्रकृति की शांत सरिता की तरह हृदय को स्पर्श करते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत की गंभीरता और आध्यात्मिकता को उन्होंने अपनी कला के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया है। उन्होंने बांसुरी की दुनिया में कई नए प्रयोग किए, एक नई दिशा दी। फिल्म संगीत में भी पंडित रोनू मजुमदार ने बांसुरी को केवल एक वाद्य यंत्र नहीं रहने दिया, बल्कि उसे भावनाओं की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम बना दिया। उनकी धुनों में कहीं प्रेम की कोमलता है तो कहीं लोक जीवन की मिट्टी की सोंधी सुगंध। लोक संगीत में उनकी बांसुरी भारतीय संस्कृति और परंपरा की आत्मा को जीवंत कर देती है। फिल्म संगीत, शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। इस श्रृंखला की सुरीली कड़ियां पिरोने के लिए हमने आमंत्रित किया है पद्मश्री पंडित रोनू मजुमदार जी को, जो आकाशवाणी के टॉप ग्रेड कलाकार हैं। पंडित जी को पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी, कुमार गंधर्व पुरस्कार के अलावा अन्य बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजा गया है। उन्होंने अपनी साधना और प्रतिभा से ये सिद्ध किया है कि बांसुरी केवल संगीत का साधन नहीं, बल्कि आत्मा और संवेदना की मधुर अभिव्यक्ति है। पंडित जी के साथ तबले पर हैं अजीत पाठक जी, जो आकाशवाणी के ए ग्रेट कलाकार हैं, और बांसुरी संगत के लिए हमने आमंत्रित किया है कल्पेश साचला जी को। तो हम शुरू करते हैं श्रृंखला और हम स्वागत कर रहे हैं पंडित रोनू मजुमदार जी का। पंडित जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार ममता जी, आज बहुत प्रसन्नता हो रही है मुझे कि मैं अपने साथियों के साथ यहाँ पे उपस्थित हूँ। कुछ बातचीत, कुछ संगीत की चर्चा तो होगी ही
1: जी। और अब हम अजीत जी का स्वागत कर रहे हैं विविध भारती के स्टूडियो में। अजीत जी, स्वागत है। नमस्कार।
3: नमस्कार।
1: और अब बांसुरी संगत के लिए हमने आमंत्रित किया है कल्पेश साचला जी को। कल्पेश जी, नमस्कार, स्वागत।
4: जी नमस्कार।
1: तो अब हम शुरू करते हैं। रोनूदा, आप ये बताइए कि आज इस श्रृंखला की पहली कड़ी में बांसुरी का खजाना खोलेंगे तो सबसे पहले खजाने से कौन से मोती निकालेंगे? हमें तो आपकी ही बांसुरी का वो गाना याद आ रहा है, खाली हाथ शाम आई है, इजाजत फिल्म का गाना, जिस पर आपकी बड़ी सुरीली तान सुनाई पड़ती है। आप क्या कहेंगे?
2: ये एक ऐसा गाना पंचमदा आर डी बर्मन साहब ने कंपोज किया था। उसके पहले भी मैंने आशा जी के साथ बहुत गाने बजाए, मगर इस गाने ने मेरी उनसे दोस्ती करवा दी।
1: जी जी।
2: मतलब वो मेरी माँ भी थी और दोस्त भी थी, मन की बातें मुझसे साझा करती थी, सुख दुख की हर बातें मेरे साथ करती थी।
1: जी।
2: और जैसे ही मैंने बजाया, वो सिंगर बूथ, उस जमाने में तो लाइव रिकॉर्डिंग होती थी, तो आज की तरह नहीं कि, वो जमाना अलग था। वो फिल्म सेंटर का बहुत बड़ा एक हॉल, कोई जैसे कि मैरिज का हॉल हो,

0: आया वो सिंगर बूथ, उस जमाने में तो लाइव रिकॉर्डिंग होती थी, तो आज की तरह नहीं कि वो जमाना अलग था। वो फिल्म सेंटर का बहुत बड़ा एक हॉल, कोई जैसे कि मैरिज का हॉल हो,
1: क्या
0: इतने
1: बात
0: बड़े
1: है
0: हॉल में 150 म्यूजिशियन बजा रहे हैं, ऐसा माहौल था।
1: जी।
0: तो सिंगर बूथ से निकली और सबसे पहले मेरे पास आई, तो पहले वो उन्होंने पूछा कि अरे तुम क्लासिकल आर्टिस्ट हो क्या? मैंने बोला हाँ। तो अपने गुरुओं का नाम मैंने बताया, बोली कि सबसे बड़ी बात जो मुझे ये लगी कि जैसे मैं मुखड़ा गा रही थी, जितनी वैरायटी विविधता मैं कर रही थी, उससे अलग हटके तुमने कैसे सोचा? मैंने तो सारी वैरायटी, मुझे लगा कि मैंने गा दिया। मैंने भी जो एक भाव शुरू से वैसा ही था,
1: जी।
0: एक फक्कड़पना शुरू से था, मैंने कहा दीदी ये तो सागर है, इसका था कहाँ से मिलेगा, ये तो जितना डूबेंगे उतना और गहराई मिलेगा। बोली बहुत अच्छा, तुम घर आओ। तो उसके बाद प्रभु कुंज में जाने लगा मैं।
1: जी
0: ये लोग सारी बहनें तब प्रभु कुंज पेडर रोड में रहते थे
1: जी बिल्कुल
0: जी। लता जी को भी मालूम था कि मैं आशा जी से बहुत क्लोज हूँ, तो जैसे ही मैं जाता था तो बोलती थी तू आशा से मिलने आया है ना तो एक
1: क्या बात है
0: अजीब सा, तो मैं आपको एक मुखड़ा और अंतरा खाली हाथ शाम आई का बजा के सुना रहा हूं।
1: जी।

0: वाह पंडित जी, आपने तो बिल्कुल मंत्रमुग्ध कर दिया। और सचमुच जब फिल्मी गाना सुनते हैं खाली हाथ शाम आई तो भी हम यहाँ स्टूडियो में सुनकर सचमुच अभिभूत हो गए। तो अब बताइए, अब क्या आप सुनाएंगे हमारे श्रोताओं को?
1: 1990 आते आते क्लासिकल सोलोइस तो मैं पहले से ही था, ये नहीं कि फिल्म में मैं पहले बजाया और फिर क्लासिकल। क्लासिकल तो मैं 6 साल की उम्र से बजा रहा हूँ।
0: जी जी।
1: मगर नाम नहीं हुआ था मेरा, पहचान नहीं बनी थी, तो 1990 से ना मेरी पहचान होने लगी
0: जी।
1: तो कई बार मैं रिकॉर्डिंग मिस कर जाता था तो पंचम दास से बोलती थी कि अरे वो रोनू नहीं है, फिर कैसे चलेगा?
0: क्या बात है
1: क्या, कौन बजाएगा ऐसे
0: जी?
1: तो एक एल्बम कहते हैं ना कि जब तक इंसान सामने रहता है तो उसकी कीमत मालूम नहीं पड़ती है। नाम नहीं हुआ था मेरा, पहचान नहीं बनी थी, तो 1990 से ना मेरी पहचान होने लगी
0: जी।
1: तो कई बार मैं रिकॉर्डिंग मिस कर जाता था तो पंचम दास से बोलती थी कि अरे वो रोनू नहीं है, फिर कैसे चलेगा?
0: क्या बात है
1: क्या, कौन बजाएगा ऐसे
0: जी?
1: तो एक एल्बम कहते हैं ना कि जब तक इंसान सामने रहता है तो उसकी कीमत मालूम नहीं पड़ती है। जब पंचम दास चले गए तो लोगों को मालूम पड़ा कि दिल पड़ोसी है
0: जी,
1: क्या एल्बम था
0: जी।
1: उसमें एक गाना था गुलजार साहब का लिखा हुआ, सातों बार बोले बंसी एक

0: वाह, तो ये आप बजा के सुनाएंगे?
1: मैं आपको बजा के सुना रहा हूं।
0: जी।
1: तो उस गाने की खास बात ये थी कि मैं था अमेरिका में, और उन्होंने, और भी बांसुरी वादक थे
0: जी
1: जिससे बजवा सकते थे वो लोग, ये थे वो थे, सभी अच्छे हैं,
0: जी
1: बुरा तो कोई है नहीं,
0: बिल्कुल।
1: सभी अपने हिसाब से अच्छा ही बजाना चाहते हैं। मगर मेरे लिए इंतजार किया,
0: क्या बात है,
1: गाना तो अमेरिका से आ जाएगा तो ही होगा रिकॉर्ड।
0: वाह
1: और फिर वो आशा जी की मेरी जुगलबंदी हो गई,
0: जी जी
1: ऐसा नहीं लगा कि मैं संगतकार हूं उसमें छोटा सा पीस बजा रहा हूं, ऐसा नहीं लगता।
0: जी
1: तो मैं सातों बार मैं सुना रहा हूं आपको,
0: जी स्वागत।

हिंदी संगत कल्पेश सांचला की और तबला संगति अजीत पाठक की। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी किरण बंग, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।
1: अभी आप सुन रही थी विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से। ये आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है, FM 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। आइए प्रस्तुत है नमस्कार झालावाड़।

नमस्कार। झालावाड़ कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके रेडियो मित्र ओम प्रकाश का प्यार भरा नमस्कार। तो शुरुआत करते हैं नमस्कार झालावाड़ कार्यक्रम को इस सुविचार के साथ।

पुरुषोत्तम दास टंडन का कथन है कि अपनी भाषा में सोचने और बोलने का आत्मगौरव ही किसी राष्ट्र को वास्तविक स्वतंत्रता दिला सकता है। जब हम अपनी मातृभाषा में सोचते हैं तो हमारे विचार अधिक मौलिक, स्पष्ट और गहरे होते हैं। इससे हमारी बौद्धिक क्षमता का सही और संपूर्ण विकास होता है। अपनी भाषा में बोलने से व्यक्ति का आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ता है। यह अपनी संस्कृति और जड़ों के साथ जुड़ाव को मजबूत करता है।

भाषा केवल बातचीत का साधन नहीं है, बल्कि यह किसी राष्ट्र की संस्कृति और उसके गौरव का प्रतीक है। जब एक राष्ट्र अपनी भाषा पर गर्व करता है तो उसकी सांस्कृतिक नींव मजबूत होती है। केवल राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हो जाना ही काफी नहीं है। जब तक कोई राष्ट्र मानसिक और सांस्कृतिक रूप से अपनी भाषा और मूल्यों को नहीं अपनाता, तब तक उसकी स्वतंत्रता अधूरी है। अपनी भाषा का सम्मान ही वास्तविक स्वतंत्रता की ओर ले जाता है।

भारत में वन महोत्सव सप्ताह 2026 का आयोजन 1 जुलाई से 7 जुलाई 2026 तक किया जा रहा है। यह सप्ताह भर चलने वाला एक राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण उत्सव है, जिसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना और देश के हरित आवरण ग्रीन कवर को बढ़ाना है। इस महोत्सव की शुरुआत वर्ष 1950 में तत्कालीन केंद्रीय कृषि मंत्री डॉ. के.एम. मुंशी द्वारा की गई थी। बारिश का मौसम मानसून शुरू होने के कारण यह समय पौधे लगाने के लिए सबसे अनुकूल माना जाता है। इस दौरान होने वाले मुख्य कार्यक्रम और गतिविधियां वृक्षारोपण अभियान, स्कूल कॉलेज और सामाजिक संस्थाओं द्वारा व्यापक स्तर पर पौधे लगाए जाते हैं।

स्थानीय प्रजातियों को बढ़ावा दिया जाता है। आम, नीम और अन्य देशी फलदार व छायादार पौधों के रोपण को प्राथमिकता दी जाती है। लोगों को पेड़ों के महत्व, जलवायु परिवर्तन से निपटने और वनों की कटाई रोकने के लिए भी शिक्षित किया जाता है।

0: जलवायु और जल, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं ज्यादा बारिश और बाढ़ होती है तो कहीं लंबे समय तक सूखा पड़ता है। इन दोनों से पीने के पानी, सफाई और खेती के लिए पानी मिलना मुश्किल हो जाता है। कोविड-19 जैसे महामारी के दौरान साफ पानी बहुत जरूरी होता है। पानी की कमी से सबसे ज्यादा प्रभावित कम आमदनी वाले समुदाय होते हैं। क्या आप जानते हैं 2020 में दुनिया के 26% लोगों के पास पीने के लिए साफ और सुरक्षित पानी की सुविधा नहीं थी। यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।
1: नमस्कार, झलावाड़ कार्यक्रम में श्रोताओं आपका फिर से स्वागत है। आइए अब चर्चा करते हैं डॉक्टर बीसी रॉय की जयंती।

डॉक्टर विधानचंद रॉय, डॉक्टर बीसी रॉय की जयंती प्रतिवर्ष 1 जुलाई को मनाई जाती है। इस विशेष दिन को भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि 1 जुलाई को डॉक्टर रॉय की जयंती के साथ साथ उनकी पुण्यतिथि भी है। उनका जन्म 1 जुलाई 1882 को पटना बिहार में हुआ था। वे एक दूरदर्शी चिकित्सक और स्वतंत्रता सेनानी थे। वे एक महान चिकित्सक और राजनेता थे, जिन्होंने 1950 से 1962 तक पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। चिकित्सा विज्ञान और जनसेवा के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए उन्हें 1961 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उनके सम्मान और चिकित्सा जगत में उनके महान योगदान को याद करने के लिए भारत सरकार द्वारा 1991 में हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी।

प्यार बता देते थे। अपनी मौलिक योग्यताओं के कारण वे रॉयल सोसाइटी ऑफ मेडिसिन में, रॉयल सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन में, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ चेस्ट फिजिशियन के फेलो चुने गए। डॉक्टर राय ने यादवपुर राज्य क्षमा अस्पताल की स्थापना की तथा चित्तरंजन सेवा सदन की स्थापना में भी उनका प्रमुख हाथ था।

उन्होंने देश में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA और मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया MCI की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। विश्व के डॉक्टरों में डॉक्टर राय का प्रमुख स्थान था। प्रारंभ में देश में उन्होंने अखिल भारतीय ख्याति पंडित मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी प्रभृति नेताओं के चिकित्सक के रूप में ही अर्जित की। वे रोगी का चेहरा देखकर ही रोग का निदान और

वे ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिलिंग के अध्यक्ष रहे। इसके अतिरिक्त वे कलकत्ता मेडिकल क्लब, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जादवपुर टेक्निकल कॉलेज, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, भारत सरकार के हायर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑल इंडिया बोर्ड ऑफ बायोफिजिक्स तथा यादवपुर विश्वविद्यालय के अध्यक्ष एवं अन्य राष्ट्रीय स्तर को संस्थाओं के सदस्य रहे। चिकित्सक के रूप में उन्होंने पर्याप्त यश और धन अर्जित किया और लोकहित में कार्यों में उदारपूर्वक मुक्त हस्त दान दिया।

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था।

श्रोताओं, अभी आपने ट्यून किया है FM 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर, ये आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल, और अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार झालावाड़। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए अब चर्चा करते हैं पुरुषोत्तम दास टंडन की पुण्यतिथि। महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत रत्न से सम्मानित राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन की पुण्यतिथि हर वर्ष 1 जुलाई को यानी आज के दिन मनाई जाती है। हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने में उनका अद्वितीय योगदान था। उन्हें वर्ष 1961 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया था।

पुरुषोत्तम दास टंडन एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, राजनयिक, पत्रकार, वक्ता, समाज सुधारक तथा हिंदी भाषा के सेवक थे। उनके पिता का नाम सालिक राम था। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान वे कई बार जेल भी गए। वे सरलता, सेवा और सादगी की प्रतिमूर्ति थे। उनका विवाह चंद्रमुखी देवी मुरादाबाद के साथ हुआ था। हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करवाने में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था।

भारत के प्रमुख स्वाधीनता सेनानी राजर्षि पुरुषोत्तम दास का जन्म इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में 1 अगस्त 1882 को हुआ था। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के अग्रणी नेता के साथ साथ वे एक समाज सुधारक, कर्मठ पत्रकार, हिंदी के अन्य सेवक तथा तेजस्वी वक्ता भी थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा सिटी एंग्लो वर्नाक्यूलर विद्यालय में हुई। तत्पश्चात उन्होंने लॉ की डिग्री हासिल कर 1906 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में लॉ की प्रैक्टिस के लिए काम करना शुरू किया। भारत की आज़ादी के बाद उन्होंने विधानसभा उत्तर प्रदेश में प्रवक्ता के रूप में 13 वर्षों तक काम किया। इस दौरान 1937 से 1950 के लंबे कार्यकाल में कई बार विधानसभा को संबोधित किया गया।

भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी को प्रतिष्ठित करवाने में उनका खास योगदान माना जाता है तथा देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी उन्हें दिया गया। भारत सरकार द्वारा सन 1961 में भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया गया ऐसे महान कर्मयोगी राजर्षि के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी पुरुषोत्तम दास टंडन का 1 जुलाई 1962 को निधन हो गया।

पांचवी व आठवीं बोर्ड की पूरक परीक्षा 20 जुलाई से होगी। शिक्षा विभाग की ओर से पांचवी और आठवीं बोर्ड की पूरक परीक्षा 20 जुलाई से शुरू होगी। पांचवी बोर्ड की पूरक परीक्षा 24 जुलाई तक और आठवीं पूरक

लाइफ, पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली। महिला जगत का कार्यक्रम रहेगा प्रातः 8:30 पर। चर्चा होगी हरित भविष्य की ओर एक जन आंदोलन, वन महोत्सव 1 जुलाई से 7 जुलाई। इसमें एक भेंट वार्ता होगी, वो होगी वन महोत्सव का उद्देश्य और जन भागीदारी। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे दिन के 12 बजे। युवा साथियों का अपना कार्यक्रम रहेगा युवाणी शाम 5 बजे। चर्चा का विषय रहेगा वन महोत्सव सप्ताह, डॉक्टर बीसी रॉय जयंती और पुण्यतिथि, पुरुषोत्तम दास टंडन की पुण्यतिथि। कृषक चौपाल आप सुनेंगे साई 7 बजे। चर्चा होगी वन महोत्सव सप्ताह 1 जुलाई से 7 जुलाई। भेंटवार्ता होगी खरीफ फसलों की बुआई में सावधानियां। रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे सब रस।

तो दोस्तों, अब समय भी हो चुका है कार्यक्रम संपन्न करने का, तो हम आपसे यही कहेंगे कि हमेशा खुश रहें। तो दीजिए आपके दोस्त को अनुमति कार्यक्रम संपन्न करने की। नमस्कार झलावाड़।

अभी आप सुन रही थी कार्यक्रम नमस्कार झालावाड़। FM 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। गीतकार है आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म दोस्ताना, स्वर हैं किशोर कुमार और साथियों के।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, सुरेश वाड़ेकर और साथियों की आवाज में फिल्म संजोग से। बोल हैं आनंद बख्शी के, संगीत बद किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है FM 103.2 MHz पर। सुबह के 8 बजने को ही कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात।

0: मुख्य समाचार। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेशकियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
1: वीबीजी रामजी अधिनियम ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। इस नए कानून का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में मिलने वाले रोजगार की कानूनी गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इस बढ़ी हुई रोजगार गारंटी का मकसद ग्रामीण विकास की तेज रफ्तार को बढ़ावा देना है, लोगों की आय को अधिक सुरक्षित बनाना और ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त करना है। इस कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ सुनिश्चित करने पर विशेष दिया गया है। अगर तय समय के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस कानून में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी राम जी एक व्यापक कानून है जिसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्र लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये दरें आज से लागू हो जाएंगी। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश मजदूरी दर में

0: दूत पेजेश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न पक्षों के बीच बनी सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने के भारत के रुख को दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। ईरान के राष्ट्रपति ने शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की। ईरानी दूतावास ने बताया कि बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने भारत में ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक के सफल आयोजन पर संतोष व्यक्त किया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा।
1: भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को वर्ष 2014 में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। अगले वर्ष दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इस अवसर की ओर बढ़ते हुए दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा एवं सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति तथा जन से जन संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग लगातार गहरा हो रहा है। भारत जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता 1 अगस्त 2011 से प्रभावी है। पिछले वित्तीय वर्ष में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 27 अरब डॉलर से अधिक रहा। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। पहले ये छूट कल मंगलवार तक के लिए दी गई थी। ये रियायत घरेलू बाजारों में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता को बनाए रखने के लिए की गई है। इस छूट से प्लास्टिक पैकेजिंग, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल, रसायन, मोटर वाहन और पेट्रो रसायन उत्पादों पर आधारित कई सेक्टर्स को लाभ होगा। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आज से अगले वर्ष 30 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है और इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में ये फैसले लिए गए। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं।
2: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे। वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू हो जाएगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे।
3: उत्तराखंड सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को अधिक आधुनिक पारदर्शी और समान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजानदास ने बताया कि वर्तमान में संचालित सभी मान्यता प्राप्त मदरसों को उत्तराखंड

0: अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अधीन लाया जाएगा। साथ ही इन संस्थानों को उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद से संबद्ध किया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा मानकों के अनुरूप शिक्षा मिल सके। उन्होंने ये भी बताया कि ये व्यवस्था केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित नहीं होगी बल्कि सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदायों के अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थानों पर भी सामान्य रूप से लागू होगी।
1: भारत में शिक्षा एक समान सबको होनी चाहिए, उसी के निमित्त हमारी सरकार ने 452 मदरसों को चिन्हित किया और उनसे कहा भी गया कि आप उत्तराखंड की जो हमारा शिक्षा प्रणाली है उससे संबंध होइएगा।
0: सभी मदरसों को UDIS यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन नंबर आवंटित किया जाएगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
2: देशव्यापी जनगणना के अंतर्गत आज केरल में घर घर जाकर आंकड़ों के सत्यापन का चरण शुरू हो रहा है। इस बारे में अधिक जानकारी हमारे संवाददाता से।
3: स्वगणना की प्रक्रिया पूरे होने के बाद फील्ड सत्यापन का चरण शुरू हो गया है। यह प्रक्रिया कल खत्म हुई। इस दौरान परिवार जनगणना पोर्टल के जरिए अपने सदस्यों की जानकारी डिजिटल रूप से जमा कर सकते थे। जिन लोगों ने ऑनलाइन पंजीकरण पूरा कर लिया है उन्हें घर पर आने वाले जनगणना कर्मचारी को सेल्फ एन्यूमरेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर देना होगा। इसके बाद कर्मचारी यह जाँच करेगा कि ऑनलाइन दी गई जानकारी मौजूदा रिकॉर्ड से मेल खाती है या नहीं। अगर कोई

0: प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं।
1: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे। वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमता, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू हो जाएगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे।
2: उत्तराखंड सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और समान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजानदास ने बताया कि वर्तमान में संचालित सभी मान्यता प्राप्त मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अधीन लाया जाएगा। साथ ही इन संस्थानों को उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद से संबद्ध किया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा मानकों के अनुरूप शिक्षा मिल सके। उन्होंने ये भी बताया कि ये व्यवस्था केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित नहीं होगी, बल्कि सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदायों के अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थानों पर भी सामान्य रूप से लागू होगी।
3: भारत में शिक्षा एक समान सबको होनी चाहिए, उसी के निमित्त हमारी सरकार ने 452 मदरसों को चिन्हित किया और उनसे कहा भी गया कि आप उत्तराखंड की जो हमारा शिक्षा प्रणाली है उससे संबंध होइएगा।
2: सभी मदरसों को यूडायस, यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन नंबर आवंटित किया जाएगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: देशव्यापी जनगणना के अंतर्गत आज केरल में घर घर जाकर आंकड़ों के सत्यापन का चरण शुरू हो रहा है। इस बारे में अधिक जानकारी हमारे संवाददाता से।
4: स्वगणना की प्रक्रिया पूरी होने के बाद फील्ड सत्यापन का चरण शुरू हो गया है। यह प्रक्रिया कल खत्म हुई। इस दौरान परिवार जनगणना पोर्टल के जरिए अपने सदस्यों की जानकारी डिजिटल रूप से जमा कर सकते थे। जिन लोगों ने ऑनलाइन पंजीकरण पूरा कर लिया है उन्हें घर पर आने वाले जनगणना कर्मचारी को सेल्फ एन्यूमरेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर देना होगा। इसके बाद कर्मचारी यह जांच करेगा कि ऑनलाइन दी गई जानकारी मौजूदा रिकॉर्ड से मेल खाती है या नहीं। अगर कोई अंतर,
5: चीन और पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न है और उनकी वायुसेनाएं तेजी से आधुनिक हो रही, ऐसे में डीआरडीओ द्वारा नेत्र प्रणाली को अंतिम परिचालन की मंजूरी मिलना भारत की हवाई निगरानी क्षमता और तकनीकी आत्मनिर्भरता के एक नए दौर की शुरुआत जैसा है।
0: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजिशकियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: FM 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है। आइए प्रस्तुत है कार्यक्रम मिशन लाइफ, पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली, शिक्षिका अलका हाड़ा जी से अनिला जैन की बातचीत।
7: जीवन की कहानी है, हर पेड़ हर पत्ती में छुपी एक निशानी है, संभाल लो इसे, ये विरासत है आने वाले कल की। पर्यावरण बचाना ही इंसानी जिम्मेदारी है, पर्यावरण बचाना ही इंसानी जिम्मेदारी है। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ आरजे अनिला जैन, लेकर हाजिर हूँ साप्ताहिक कार्यक्रम मिशन लाइफ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जो सिर्फ हमारी जिंदगी ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य।

0: भविष्य भी तय करेगी। हमारा आज का विषय है पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली। श्रोताओं, क्या कभी आपने सोचा है कि हमारी छोटी छोटी आदतें भी हमारी प्रकृति पर कितना बड़ा असर डालती हैं? दोस्तों, हम सभी को ऐसी जीवन शैली अपनानी चाहिए जो न सिर्फ हमें स्वस्थ रखे बल्कि हमारी प्रकृति को भी सुरक्षित और संरक्षित बनाए। आज का ये खास कार्यक्रम आप सभी को सोचने पर मजबूर करेगा और शायद आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव भी लाएगा। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी ही खास पर्यावरण प्रेमी जो पर्यावरण के प्रति खुद तो जागरूक हैं ही साथ में दूसरों को भी जागरूक करने में अहम भूमिका निभा रही हैं, शिक्षिका अलका हाड़ा जी। तो अलका जी, आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
1: नमस्कार अनिला जी।
0: अलका जी, सबसे पहले हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि पर्यावरण अनुकूलन जीवन शैली वास्तव में क्या होती है और आप अपने रोज़मर्रा जीवन में किन किन तरीकों से प्रकृति को सुरक्षित और बेहतर बनाते हैं।
1: देखिए मैडम, दैनिक जीवन में ऐसे विकल्प चुनना जो प्राकृतिक संसाधनों को बचाए, प्रदूषण को कम करे और पृथ्वी को नुकसान न पहुंचाए, यही पर्यावरण अनुकूलन जीवन शैली है। इससे हम अपने जीवन में प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करके, वृक्षारोपण करके, जल बिजली का संरक्षण करके
0: जी,
1: घर में बच्चों को भी बिजली और जल को बचाना सिखाकर
0: जी,
1: प्लास्टिक की थैलियों की जगह यदि कपड़े की थैलियों का उपयोग किया जाए और बच्चों को जब भी वो बाजार जाए कपड़े का थैला उन्हें पकड़ाया जाए और सब्जी लेते वक्त
0: जी,
1: वहाँ सब्जी वालियों से कपड़े की थैली में ही सब्जी ली जाए, तो हम पर्यावरण को काफ़ी हद तक सुरक्षित और बेहतर बनाने में सहयोग कर सकते हैं।
0: अलका जी, जैसे कि हम महसूस कर रहे हैं कि हर साल गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, तो इसके पीछे आप क्या मुख्य कारण मानती हैं और क्या यह कहीं ना कहीं हमारी जीवन शैली और पर्यावरण के प्रति लापरवाही का परिणाम है?
1: हाँ नीला जी, मैं मानती हूँ और देख भी रही हूँ कि लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है और इसका मुख्य कारण वनों की कटाई, औद्योगिकरण, शहरीकरण, जलवायु परिवर्तन और लोगों की जीवन शैली है। जैसे दैनिक जीवन में आजकल आधुनिक संसाधनों का अत्यधिक उपभोग होने लगा है
0: जी,
1: अत्यधिक एसी वाहनों का उपयोग, घर में अत्यधिक एसी का उपयोग करने से भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है
0: जी,
1: वाहनों से निकलने वाले धुओं के कारण भी हमारा पर्यावरण काफ़ी हद तक प्रदूषित हो रहा है।
0: मैडम, आपकी नज़र में हम ऐसे कौन कौन से छोटे बदलाव लाएं जो हमारे पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित रख सके?
1: हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखिए ऐसे बहुत से छोटे छोटे बदलाव ला सकते हैं, जैसे कपड़े की थैलियों का उपयोग करना
0: जी,
1: जन्मदिन, शादी की सालगिरह या अन्य कोई भी खुशी के अवसरों पर हमें वृक्षारोपण करना चाहिए, पौधों को उपहार में भी दे सकते हैं, बिजली की बचत करना, जल की बचत करना, पर्यावरण को हम इस तरह से सुरक्षित कर सकते हैं। प्लास्टिक की थैलियों एवं प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का हम दैनिक जीवन में कम से कम उपयोग करके पर्यावरण को संरक्षित करने में कदम आगे बढ़ा सकते हैं। आजकल प्लास्टिक का उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है जिससे प्लास्टिक का कचरा बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। प्लास्टिक के कचरे को हमें कहीं भी इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। अगर हम प्लास्टिक कहीं भी फेंकेंगे, नदियों में फेंकेंगे या सड़क पर फेंकते हैं
0: जी,
1: तो जिस जानवर, गाय, भैंस, बकरी जो भी सड़क पर घूमते वो खा लेते हैं
0: जी,
1: और इससे उनके शरीर को नुकसान पहुँचता है।

0: है।
1: जी
0: नदियों में अगर प्लास्टिक डालते हैं
1: जी
0: तो नदियां प्रदूषित होती है। प्लास्टिक का कचरा ऐसा है कि जिसका निस्तारण हम किसी भी तरह से पूरी तरह नहीं कर सकते हैं।
1: जी
0: अगर उसे जलाते हैं तो पर्यावरण प्रदूषित होता है, अगर उसे हम जमीन में गाड़ते हैं तो
1: जी
0: भी जमीन प्रदूषित होती है।
1: जी
0: तो हमें दैनिक जीवन में प्रयास करने चाहिए कि
1: जी
0: हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं और प्लास्टिक का कोई भी सामान का दैनिक जीवन में उपयोग कम से कम करें।
1: मैडम, अभी आपने कहा कि प्लास्टिक का उपयोग आजकल हम सभी बहुत करने लगे हैं, जो काफ़ी चिंता का विषय है। तो हम कैसे प्लास्टिक के उपयोग से बचें, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी?
0: हाँ नीला जी, यह चिंता का विषय तो है। मैं यह कहना चाहूँगी अपने देश की जनता को, पर्यावरण को संरक्षित करना, सुरक्षित रखना प्रत्येक देशवासी की जिम्मेदारी होती है।
1: जी
0: हम सभी को प्लास्टिक का उपयोग बंद करके,
1: जी
0: आधुनिक संसाधनों का सीमित मात्रा में उपयोग करके
1: जी
0: एक जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य निभाना चाहिए, जिससे पर्यावरण की जो चिंता है कि यह प्रदूषण हो रहा है, तो हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि
1: जी
0: प्रत्येक देशवासी प्लास्टिक का जो सामान है उसका उपयोग बंद करे। और आज के समय में पर्यावरण को बचाना एक चिंता का बहुत बड़ा विषय बन गया है। इसलिए हम सभी को पर्यावरण को स्वच्छ बनाने का हर प्रयास करने होंगे।
1: अलका जी, आप युवाओं को पर्यावरण के प्रति कितना जागरूक मानती हैं, और आपकी नज़र में आज युवा वर्ग को और अधिक जागरूक करने के लिए कौन-कौन से प्रभावी तरीके अपनाने चाहिए?
0: अनिला जी, आज की युवा पीढ़ी मेरी नज़र में पर्यावरण के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं है। आज के आधुनिक दौर में युवा पीढ़ी जैसे दौड़ रही है,
1: जी
0: उन्हें कैसा भी ज्ञान देकर समझाया नहीं जा सकता है। उनको सीधे व्यवहारिक ज्ञान से जोड़कर, जैसे
1: जी
0: विशेष अवसरों पर वृक्षारोपण करवाकर,
1: जी
0: पर्यावरण संबंधित वीडियो रील्स बनवाकर,
1: जी
0: पर्यावरण संबंधित खेल नाटक जैसी प्रतियोगिताओं से जोड़कर, घरों में भी माता पिता पर्यावरण संबंधी कार्य करके युवा पीढ़ी को जागरूक कर सकते हैं।
1: अलका जी, जैसा कि हम देख रहे हैं, आज सभी की भागदौड़ भरी जिंदगी है। ऐसे में पर्यावरण के प्रति जागरूक रहना कितना चुनौतीपूर्ण है?
0: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में पर्यावरण के प्रति जागरूक रहना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है,
1: जी
0: परंतु फिर भी हम

0: जागरूक कर सकते हैं।
1: अलका जी, जैसा कि हम देख रहे हैं, आज सभी की भागदौड़ भरी जिंदगी है, ऐसे में पर्यावरण के प्रति जागरूक रहना कितना चुनौतीपूर्ण है।
0: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में पर्यावरण के प्रति जागरूक रहना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है
1: जी,
0: परंतु फिर भी हम अगर थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर पर्यावरण संरक्षण संबंधित छोटे छोटे प्रयास अगर करते रहेंगे
1: जी,
0: तो पर्यावरण संबंधित चुनौतियों का सामना कर सकेंगे
1: जी।
0: जैसे आजकल घरों में हर कार्य मशीनों से होने लगा है
1: जी,
0: वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, एसी, इन सब से जल एवं बिजली की खपत अत्यधिक बढ़ रही है
1: जी।
0: इनका अगर हम सीमित मात्रा में उपयोग करें, थोड़ी मात्रा में ही जल और बिजली हर कोई परिवार बचाने लग जाए तो भी हम पर्यावरण को बहुत अधिक संरक्षित कर सकते हैं।
1: अलका जी, अब आप हमें ये बताइए कि एक आम इंसान अपनी दिनचर्या में ऐसे कौन कौन से बदलाव करे जिससे हमारा पर्यावरण साफ और सुरक्षित रहे।
0: हाँ नीला जी, एक आम इंसान को अपनी दिनचर्या में पर्यावरण सुरक्षा का ध्यान हमेशा रखना चाहिए
1: जी।
0: जैसे घर में अनावश्यक बिजली ना जले, जल की बचत करें, अपने घर में हरियाली के लिए पौधे लगाएं, चाहे जगह नहीं हो तो गमलों में ही लगाना पड़े तो भी लगाएं
1: जी।
0: अगर हरियाली रहेगी तो हमें ऑक्सीजन, हवा और हरा भरा वातावरण मिलेगा
1: जी।
0: कचरा सड़क पर न फेंकें, बाजार जाएं तो कपड़े का थैला लेकर जाएं, दूध लाने के लिए भी केतली प्लास्टिक थैली में दूध ना लाएं, तभी हमारे जीवन के साथ साथ हमारा पर्यावरण भी स्वस्थ और सुरक्षित रह सकेगा। हरा भरा जीवन सुहावना, हरियाली हो गोद धरा की,

0: विदा लेते हैं, तो सुनते रहें आकाशवाणी का झालावाड़ केंद्र। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रही थी कार्यक्रम मिशन लाइफ, पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली, शिक्षिका अलका हाड़ा जी से अनिला जैन की बातचीत।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मिशन लाइफ। ये आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है FM 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। बहनें अब सुनेगी अपना कार्यक्रम महिला जगत।

हरी भरी वादियाँ, सुंदर ये नज़ारे, कल कल बहते झरने मन को प्यारे, चहकते परिंदे लहराती हवाएं, धरती की गोद में जीवन मुश्काए, फूलों की खुशबू, नदियों की कलकल, हरियाली से महके ये दुनिया पल पल। आओ मिलकर इसे सुरक्षित बनाएं, प्रकृति के रंगों को हम सब और निखराएं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ मैं अर्चना आज के महिला जगत कार्यक्रम में अपने सभी सखी सहेलियों का और अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। और आज सखियों, 1 जुलाई है और आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है, जो हर साल देश के महान चिकित्सक डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भारत रत्न से सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी श्री पुरुषोत्तम दास टंडन की आज पुण्यतिथि है। महिला जगत परिवार की ओर से सत सत नमन। सखियों, आज हम सब वन संपदा की मिलकर करें रखवाली, तभी आएगी धरती पर हरियाली। आप सभी को वन महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं और हरित भविष्य के लिए अनंत शुभकामनाएं और बधाई। हम सब चाहते हैं कि हमारा जो पर्यावरण है वो अच्छा रहे, गर्मी कम रहे, सबको पर्याप्त जल मिलता रहे, भविष्य हमारा हरा भरा रहे। इसके लिए हम सभी को निरंतर प्रयास करते रहना है। और इसी को ध्यान में रखते हुए सन 1950 में तत्कालीन केंद्रीय कृषि मंत्री कन्हैयालाल माणिकलाल

0: आकाशवाणी एट 90।
1: सखियों, अब अपने कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं और हम जानते हैं, देख भी रहे हैं कि देश की तेजी से बढ़ती शहरी आबादी, बदलता जलवायु परिवर्तन और बढ़ते प्रदूषण के कारण पर्यावरण बहाली की आवश्यकता और अधिक बढ़ गई है। वन महोत्सव जैसे आयोजनों की मुख्य भूमिका पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाना है। अब बात करें हमारे झालावाड़ की, तो झालावाड़ जहाँ इतिहास है, विरासत है, जैव विविधता है, यहाँ की अब हरियाली की जिम्मेदारी हम सभी की है। कैसे, आपके मन में कुछ इसी तरह के प्रश्न चल रहे होंगे? चलिए, आपके प्रश्नों के आपको जवाब मिलेंगे। वन महोत्सव का उद्देश्य और जनभागीदारी को जानते हैं और समझते हैं पिड़ावा के सहायक वन संरक्षक श्री संजू कुमार शर्मा जी से। नमस्कार सर, आज के महिला जगत कार्यक्रम में मैं अर्चना आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। सर, आज आपसे बात करना चाहेंगे वन महोत्सव का उद्देश्य और जनभागीदारी इस विषय पर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव पूरे भारत देश में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वन महोत्सव सप्ताह नहीं है, संस्कार है। झालावाड़ वन मंडल

0: यदि बात की जाए तो बंद महोत्सव की जो चुनौतियां हैं या समस्याएं हैं वो क्या क्या सामने आती हैं?
1: जी, वैसे तो झालावाड़ जिले की जब गणना होती है तो राजस्थान के अत्यधिक वन वाले क्षेत्रों में इसको गिना जाता है। यहाँ 19% के लगभग वन क्षेत्र है, लेकिन फिर भी जो एक लक्ष्य है उसमें हम कहीं ना कहीं पीछे हैं, और इसी को सफल बनाने के लिए वन महोत्सव आयोजित करते हैं और उसके माध्यम से वन क्षेत्र को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। अब रही चुनौतियों की बात, सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पौधे लगाना नहीं बल्कि उन्हें संरक्षित करना और उन्हें बचाना है। इसके लिए सबसे बड़ी बात तो जैसे आप देख सकते हैं वर्षा की अनियमितता, अगर वर्षा अधिक हो जाए तो पौधों को क्षति पहुंचती है और वर्षा कम हो तो वो भी पौधों के लिए हानिकारक होती है, तो ये भी एक सबसे बड़ी चुनौती है। वैसे झालावाड़ जिला वर्षा के क्षेत्र में समृद्ध है। दूसरा आता है पौधों की सुरक्षा व्यवस्था। यदि जहां हम पौधे लगा रहे हैं उनकी फेंसिंग या उनकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होगी तो आवारा मवेशी हैं, और वन क्षेत्र होने के कारण जंगली वन्य जीव भी हैं जिनमें नील गाय वगैरह हैं जो पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है पौधे लगाने के पश्चात उनकी नियमित रूप से देखभाल करना, उनकी सिंचाई करना, और इन सब में कहीं ना कहीं उनके संरक्षण में कहीं ना कहीं हमारी जागरूकता की कमी कि कैसे पौधों का चयन करना है, भूमि के अनुरूप पौधों का चयन करना है, वातावरण और जलवायु के अनुकूल पौधों का चयन करना है, तो इस तरह का जो तकनीकी अभाव होता है उसके अभाव में लोग अंधाधुंध पौधे लगा देते हैं और जो समय तक जीवित नहीं रह पाते और नष्ट हो जाते हैं। दूसरा है सीमित संसाधन। वन विभाग की बात करते हैं तो अकेला वन विभाग ये कार्य करने में सक्षम नहीं है, कहीं ना कहीं उसे संसाधनों की कमी है, उतना उसके पास मैन पावर नहीं है, तो ये ऐसी चुनौतियां हैं जो कहीं ना कहीं वन महोत्सव के कार्यक्रम को प्रभावित करती हैं।
0: जी सर, आपने बहुत अच्छे से बताया कि क्या क्या समस्याएं या चुनौतियां हमारे सामने आती हैं। तो इस साल वन महोत्सव के तहत झालावाड़ वन मंडल का जो लक्ष्य है वो क्या रखा गया है?
1: एक पेड़ माँ के नाम जो कार्यक्रम है उससे प्रभावित होकर राजस्थान सरकार ने भी वन महोत्सव में सभी जिलों को अलग अलग लक्ष्य आवंटन किए हैं, जिनमें इस वर्ष झालावाड़ जिले को 26 लाख पौधों का लक्ष्य रखा गया है। इस 26 लाख पौधों की तैयारी के लिए वन विभाग ने जिले की 19 नर्सरियों में अलग अलग प्रजाति के झालावाड़ जिले की जलवायु के अनुकूल पौधे तैयार किए हैं जो विभिन्न नर्सरियों से लोग इस वन महोत्सव के अवसर पर वर्षा ऋतु में प्राप्त कर सकते हैं। 26 लाख पौधे जो लगाए जाने हैं वो 24 विभागों के माध्यम से हम लगाने जा रहे हैं, जिनमें वन विभाग अकेले 10.5 लाख के करीब पौधे लगाएंगे और शिक्षा विभाग को 5 लाख और पंचायती राज विभाग को 5 लाख पौधों का लक्ष्य दिया गया है। इसके अलावा पुलिस, जल संसाधन, PWD, स्वायत्त शासन विभाग और प्रदूषण नियंत्रण जैसे विभाग हमारे साथ शामिल है, और इन सबके अलावा जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रहेगी सामाजिक संगठन, आम नागरिक और विभिन्न NGO हमारे साथ जुड़कर इस वन महोत्सव में लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारा सहयोग करेंगे।
0: जैसा कि अभी आपने कहा कि जो हमारा लक्ष्य है वो 24 लाख पौधे लगाने का है, अलग अलग विभागों को इसकी जिम्मेदारी भी दी गई है और

0: आता है, देखने में आता है कि सरकार लगाएगी हम क्यों लगाएं, या सरकार ये काम करेगी हम क्यों करें। तो इस सोच को बदलने के लिए हम सबका जो सामूहिक प्रयास है वो क्या होना चाहिए?
1: बहुत अच्छा प्रश्न है कि सरकार लगाएगी हम क्यों लगाएं, लोगों के बीच से बात निकल के आती है। इस भावना को, इस बात को हटाने के लिए हमें सबसे पहले तो ये देखना होगा कि एक स्वामित्व की भावना विकसित करें। लोगों को यह हमें समझाना होगा कि पेड़ लगाना केवल वन विभाग या सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सबका ये साझा प्रयास है। ये जलवायु, ये जंगल, ये हम सबके हैं। ये प्राकृतिक जो भी संपत्ति है वो हम सबकी है। इस हेतु हमें अलग अलग जगह, स्कूल, कॉलेज और लोगों के बीच जाकर नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाने होंगे। दूसरा, एक पेड़ माँ के नाम जैसे संकल्पों से जुड़कर हमें एक व्यक्ति एक पौधे का संकल्प, और एक विद्यार्थी पांच पौधों का संकल्प, और एक परिवार 10 पौधों के संकल्प जैसे नए नए संकल्प हमें विकसित करने होंगे। और बच्चों में इस तरह के संस्कार भी हमें परिवार से, घर से देने होंगे कि वह पेड़ों के प्रति जागरूक हो और पेड़ों की संरक्षण और देखभाल करने में उत्सुक हो। इसके अलावा जो हमारे बीच, हमारे आसपास वन और पर्यावरण और पौधारोपण के क्षेत्र में अच्छे कार्य कर रहे हैं, उन लोगों को समाज के बीच लाकर उनको सम्मानित करें, जिससे उनकी प्रेरणा से लोग इससे जुड़ सकें।
0: जी सर, अभी आपने बहुत अच्छे से बताया कि हमें समाज के जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनको सम्मानित करना चाहिए। देखा जाए तो जन भागीदारी के बिना जो वन महोत्सव है वो अधूरा है। इसके लिए जो आम जनता है, स्कूल कॉलेज हैं या ग्राम पंचायत हैं या जो भी एनजीओज हैं, वो किस प्रकार से इसमें अपनी सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं?
1: जी, ये जो साझा प्रयास है ये इन सबके माध्यम के बिना पूरा नहीं हो सकता। इसके लिए हमें सबसे पहले आम जनता को जागरूक करना होगा। हमें उनको बताना होगा कि आपको पौधारोपण के संकल्प लेने हैं, और पौधारोपण करना ही उनका उद्देश्य ना रहे, उनकी देखभाल और उनकी जिम्मेदारी लेना भी उनका महत्वपूर्ण उद्देश्य हो। इसके साथ साथ लोगों में हमें ये भावना विकसित करनी होगी कि उनके विभिन्न दिवस, जैसे जन्मदिन है, उनके सेवानिवृत्ति का अवसर है, उनका कोई जीवन का विशेष दिन हो, उस दिन भी वो पौधारोपण करने के लिए प्रेरित हों। स्कूल कॉलेजों में मैं जैसे बात कर रहा था अभी कि एक छात्र 5 पौधे लगाएं और उनकी देखभाल करें। हो सकता है वो जगह का अभाव हो, 2 पौधे स्कूल लगा सकते हैं, 2 पौधे अपने निकटस्थ कोई उद्यान में लगा सकते हैं और 1 पौधा घर पे लगाएं। इसके अलावा स्कूलों में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं, कंपटीशन कराएं, जिनसे लोगों में, छात्रों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता हो सके। ग्राम पंचायत और नगर पालिकाएं इसमें महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा सकती हैं। इस तरह के विकास कार्य विकसित करें जिसमें रोड के साइड वृक्षारोपण हो, छोटे छोटे उद्यान हो, जिनको फेंसिंग और ट्री गार्ड के माध्यम से सुरक्षित कर पौधारोपण के कार्य किए जा सके। दूसरा, एनजीओ सामाजिक संस्थाएं हैं, वो भी विभिन्न अवसरों पर इस वर्षा ऋतु में अलग अलग जगह का चयन कर कुछ भूमि को गोद लेकर वहां भी वृक्षारोपण कर सकते हैं और उन वृक्षारोपण क्षेत्रों की देखभाल कर एक महत्वपूर्ण जन भागीदारी और सहयोग निभा सकते हैं।
0: यह एक सप्ताह का कार्यक्रम न रहकर इसे जन आंदोलन बनाने के लिए हम सबके सामने क्या रोड मैप होना चाहिए?
1: मैं अभी बात कर रहा था कि सबसे महत्वपूर्ण तो रोड मैप में पहला बिंदु जो आता है कि जन जन तक संदेश पहुंचाना। हर व्यक्ति को इन आयोजनों से जुड़ना होगा, उन्हें अधिक से अधिक पौधे लगाने होंगे और उन पौधों की देखभाल और संरक्षण की जिम्मेदारी लेनी होगी। हमारे बीच आज का महत्वपूर्ण साधन सोशल मीडिया है, रेडियो, टीवी, स्थानीय मीडिया और जो स्थानीय पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हमें इस पौधारोपण और वन महोत्सव के बारे में अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करना होगा। और

अच्छे से निभानी है, अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, अपनी जैव विविधता को बचाना है। आपने हमारे कार्यक्रम को इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों, अभी आप सुन रही थी भेंट वार्ता, वन महोत्सव का उद्देश्य और जन भागीदारी। इसके लिए पुनः एक बार पिड़ावा सहायक वन संरक्षक श्री संजू कुमार शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे कार्यक्रम के लिए इतना समय दिया और हम सबको बताया कि किस तरह से हम अपने वनों को, अपने आसपास के वातावरण को, अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। और सखियों, अब चलते हैं, ले चलते हैं आपको गीत संगीत की ओर, जिसका आप सभी को बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है। तो चलिए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में एक खूबसूरत गीत।

और दिल्ली राज्यों को शामिल करते हुए अरावली पर्वत श्रृंखला के चारों ओर ग्रीन बेल्ट बफर बनाने की एक महत्वाकांक्षी योजना है। भौगोलिक रूप से इसका 80% विस्तार राजस्थान में है। इसके तहत 19 जिलों में 550 किलोमीटर क्षेत्र में वनीकरण और इकोसिस्टम बहाली का कार्य किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य रेत के तूफानों को रोकना, जल संरक्षण, जैव विविधता के साथ साथ आजीविका और रोजगार के अवसर पैदा करना है। सखियों, यह राजस्थान की लाइफलाइन है, क्योंकि थार को पूर्वी राजस्थान में बढ़ने से रोकती है, प्रदूषण और धूल भरी आंधियों को रोकती है। जयपुर, अलवर, उदयपुर का जो भूजल अरावली से रिचार्ज होता है, अरावली को फिर से हरा भरा बनाने के लिए हम सभी संकल्प लें। अरावली बूढ़ी है पर मरी नहीं, इसे ऑक्सीजन चाहिए ना कि डायनामाइट। और अब मैं आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देती हूँ, क्योंकि समय हो गया है आप सभी से इजाज़त लेने का। तो दीजिए अनुमति अर्चना को। नमस्कार।

और सखियों, अब चलते हैं जानकारी की बातों की ओर। और आज है अरावली ग्रीन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में आप सभी के लिए जानकारी। यह केंद्र एवं राज्यों की संयुक्त योजना है। यह राजस्थान, हरियाणा, गुजरात

0: बहनें अभी सुन रही थी अपना कार्यक्रम महिला जगत। ये आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है, FM 103.2 MHz पर। सुबह के 9 बजने को ही कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे जयपुर अजमेर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: मुख्य समाचार। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में। 2 दिन के सम्मेलन का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शुभारंभ करेंगे। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम देश भर में आज से लागू। केंद्र सरकार ने संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित की। दौसा जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे में 8 लोगों की मृत्यु, 20 से अधिक लोग घायल। और पांचना बांध पानी बंटवारे को लेकर पिछले 20 वर्षों से चला आ रहा विवाद सुलझा, संबंधित पक्षों के बीच सहमति बनी। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित होगा। ये सम्मेलन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राजस्थान सरकार की ओर से आयोजित किया जा रहा है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होने वाले इस 2 दिन के सम्मेलन की थीम विकसित भारत 2047, AI enabled, data driven and secure

300 रुपए प्रतिदिन का अंतरिम आधार पारिश्रमिक दर लागू किया गया है और सुनिश्चित किया गया है कि इस कार्यक्रम के तहत कोई भी अधिसूचित दर इससे कम नहीं हो। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर वीबीजी रामजी के तहत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया।

पहले ये छूट कल यानी मंगलवार तक के लिए दी गई थी। ये रियायत घरेलू बाजार में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए की गई है। इस छूट से प्लास्टिक पैकेजिंग, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल्स, रसायन, मोटर वाहन और पेट्रो रसायन उत्पादों पर आधारित कई सेक्टर्स को लाभ होगा। इस बीच तेल विपणन कंपनियों ने आज 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर के दाम में 183.50 रुपए की कमी की है। भारतीय तेल निगम के अनुसार संशोधित दरें आज से लागू हो गई हैं। कीमतों में कटौती के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत घटकर 2,930 रुपए हो गई है। इस निर्णय से रेस्टोरेंट, ढाबों, होटलों और खाद्य तथा पेय पदार्थों के कारोबार से जुड़े व्यवसायों को राहत मिलने की उम्मीद है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। दौसा जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर धनावड़ा के पास आज अलसुबह एक सड़क हादसे में 8 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 20 से अधिक लोग घायल हो गए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेंद्र फौजदार ने आकाशवाणी को बताया कि ये दुर्घटना एक स्लीपर बस के ट्रक से टकरा जाने के बाद उसमें आग लगने से हुई। आग के बाद कई यात्री जलती हुई बस में फंस गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज

जूली फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम चित्रलोक से अब दीजिए आपकी रेडियो दोस्त पूजा नारानिया को आज्ञा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सुनते रहिए आगे के कार्यक्रम विविध भारती के संग।

विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।

ना इतना मेलोडियस बन पड़ा है कि लगता है जैसे अभी अभी ही बना हो। इतना तरोताजा और समसामायिक, हर दौर में उतना ही असरदार।

इतना मेलोडियस बन पड़ा है कि लगता है जैसे अभी अभी ही बना हो। इतना तरोताजा और समसामायिक, हर दौर में उतना ही असरदार।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो। मैं ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो। मैं ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये
2: एक जानी मानी शायर, एक जानी मानी गीतकार, वो कहते हैं खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिश हो तो भीग जाया कर। दर्द हीरा है, दर्द मोती है, दर्द आंखों से न बहाया कर। सेल्यूलॉइड

एक जानी मानी शायर, एक जानी मानी गीतकार। वो कहते हैं, खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिश हो तो भीग जाया कर। दर्द हीरा है, दर्द मोती है, दर्द आंखों से न बहाया कर।

0: 15, भीड़ और इन सब में गाने लिखे, थप्पड़ के सारे गाने आपने लिखे,
1: मुल्क के सारे गाने,
0: तो मुल्क के, तो मैं चाहती हूँ कि मुल्क फिल्म का गाना, फिर आर्टिकल 15 का क्रमवार आप बताएं और रचना प्रक्रिया बताएं।
1: मुल्क का गाना आप वो सुनाएं, पिया समाए
0: जी,
1: बहुत अच्छा गाना है,
0: बहुत पसंदीदा कव्वाली, कव्वाली है,
1: यस यस,
0: कव्वाली की शक्ल में है ये गाना। और हम आपको बताएं कि विविध भारती
1: उसमें हमारा पूरा हिंदुस्तान है उस गाने
0: जी
1: में।
0: बिल्कुल, पूरी फिल्म बड़ी बेहतरीन है, इसमें अनुभव सिन्हा जी को बधाई जाती है हम सबकी ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से।
1: मैं समझता हूँ कि जो मुल्क फिल्म है
0: जी,
1: ये आर्टिकल 15 है, ये ऐसी फिल्म है जो हमारे हिंदी सिनेमा में जो ऐसी फिल्में बनी हैं जो याद की जाएंगी,
0: बिल्कुल, जिनका जिक्र किया जाए,
1: जिक्र
0: ये
1: किया
0: दर्ज होती हैं आज के समय में।
1: हाँ, वो ऐसी फिल्मों में ये फिल्में हमेशा जिंदा रहेंगी, जैसे थप्पड़ है, मुल्क है, आर्टिकल 15 है, और मेरी खुशनसीबी है कि मैं इन फिल्मों का हिस्सा हूँ।
0: शकील साहब, ये मुल्क फिल्म की बेहद मकबूल कव्वाली और विविध भारती से एक प्रोग्राम होता है सुबह चित्रलोक, पहले ये भारत की गूंज के नाम से प्रसारित होता था, इसमें अक्सर हम विविध भारती से प्रसारित किया करते थे और उसमें आपका नाम लेते हुए बड़ा फक्र महसूस होता था।

0: तो ये मैंने एक मतलब स्टोरी बोर्ड बनाया और इसको मैंने शायरी में लिखा और वो इस तरह से गाना बना इंतजारी।
1: जी,
0: हाँ
1: तो वो शायरी कैसे बनी वो बताइए, मतलब वो शेर अगर याद है
0: हाँ
1: तो।
0: इसी इसी तरह से बनी वो कि आना आ भी जाना इंतजारी है तेरी,
1: क्या बात है, वाह
0: ले जा जो रिश्तों की रेजगारी है तेरी,
1: वाह
0: है
1: वाह, बहुत
0: ना?
1: सुंदर।
0: है ना? अच्छा पहले इसमें ले जा जो रिश्तों की रेजगारी है तेरी, ये लाइन पहले नहीं थी, उसमें कुछ खुमारी राइमिंग की
1: जी,
0: लाइन थी। तो अनुभव सिन्हा साहब ने कहा कि शकील भाई ये इंतजारी लफ्ज बड़ा यूनिक है, इंतजार होता है, इंतजारी लोग नहीं लिखते हैं। तो हमारे बचपन में हम गांव में सुनते थे, अरे हम तुम्हारी इंतजारी देखत रहे हैं, है ना? इंतजारी कर नहीं रहे थे, इंतजारी देखत रहे हैं, पुराने लोग बोलते थे। तो अब हमारा जो मुल्क है ना, वो बहुत विशाल, बहुत
1: विविध
0: बड़ा मुल्क है
1: विविधरंगी है।
0: और बहुत मतलब भाषाएं बहुत हैं, तो कोई भी शब्द कुछ अलग से आता है तो वो कानों को भला लगता है
1: बिल्कुल।
0: ना, कुछ नया लगता है जब। तो मैंने इंतजारी जानबूझ के, और बोले ये इंतजारी और रेजगारी बड़े कमाल, अरे इंतजारी बड़ा कमाल लग रहा है, ये खुमारी जो है इसको चेंज करो यार, कुछ नया लफ्ज ले आओ। तब उसकी जगह पे ये आया, आना आ भी जाना, ये ट्यून पे लिखा हुआ गाना है।
1: जी,
0: और
1: 15, भीड़ और इन सब में गाने लिखे, थप्पड़ के सारे गाने आपने
0: हाँ
1: लिखे,
0: मुल्क के सारे गाने।
1: तो मुल्क के,
0: हाँ
1: तो मैं चाहती हूँ कि मुल्क फिल्म का गाना, फिर आर्टिकल 15 का क्रमवारा आप बताएं और रचना प्रक्रिया बताएं।
0: मुल्क का गाना आप वो सुनाए, पिया समाए,
1: जी,
0: बहुत अच्छा गाना है।
1: बहुत पसंदीदा कव्वाली,
0: हाँ हाँ
1: कव्वाली है,
0: यस यस
1: कव्वाली की शक्ल में है ये गाना, और हम आपको बताएं कि विविध भारती
0: उसमें
1: से।
0: हमारा पूरा हिंदुस्तान है उस गाने में।
1: जी बिल्कुल, पूरी फिल्म बड़ी बेहतरीन है,
0: हाँ
1: इसमें अनुभव सिन्हा जी को बधाई जाती है।

0: जिंदा रहेंगी, जैसे थप्पड़ है, मुल्क है, आर्टिकल 15 है, और मेरी खुशनसीबी है कि मैं इन फिल्मों का हिस्सा हूँ।
1: शकील साहब, ये मुल्क फिल्म की बेहद मकबूल कव्वाली और विविध भारती से एक प्रोग्राम होता है सुबह चित्रलोक, पहले ये भारत की गूंज के नाम से प्रसारित होता था, इसमें अक्सर हम विविध भारती से प्रसारित किया करते थे और उसमें आपका नाम लेते हुए बड़ा फख्र महसूस होता था।

0: जो गाना हम सुनते हैं बहुत एंजॉय करते हैं हम स्टूडियो में बैठकर और हमारे श्रोता स्टूडियो के बाहर, लेकिन उस गाने के बनने के पीछे कहानियां होती हैं और कई बार मुश्किलात भी होती हैं कि आप जैसे बता रहे हैं कि अनुभव सिन्हा जी आपको दृश्य बता रहे हैं और आप लिख रहे हैं फिर चेंजेस, तो एक कितना आसान नहीं होता है सफर। तो फिल्म मुल्क में जो कव्वाली है बड़ी हिट, पिया समय हम सबका पसंदीदा कव्वाली हम सबकी, इस गाने की बनने की क्या कहानी थी?
1: ये तो बहुत ही मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने, और वो तो चले गए शूटिंग करने। मेरे साथ अक्सर होता है यही, उनकी फिर उनके गानों को लेके कि हाँ हाँ कर लेंगे, और ऐसा फिर वो शूटिंग पे चले जाते हैं और फिर जब जरूरत होती है तब कहते जल्दी करो गाना चाहिए। तो अब वो शूटिंग कर रहे हैं उधर लखनऊ के पास मलिहाबाद वगैरह में, और
0: अभी गाना लिख दो जल्दी,
1: और हम जो हैं मैं और अनुराग साइकिया ने ये इसका किया था म्यूजिक वो, और
0: थप्पड़ में भी अनुराग साइकिया का संगीत था। हाँ, आर्टिकल 15 में भी
1: थप्पड़ सोलो था
0: और मुल्क में,
1: और मुल्क में एक ही गाना था उनका ये, बाकी प्रसाद साष्ठे ने दो गाने किए थे
0: जी जी।
1: तो हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है, वो रूट पता नहीं चल रहा है कि जाना है।
0: यहाँ पर अनुभव सिन्हा जी का भरोसा भी आप पर अटूट है।
1: हाँ,
0: कि वो गाना देकर चले गए हैं।
1: हाँ, अब मैं फोन कर रहा हूँ कि इसमें लिखना क्या है। अब वो क्योंकि उधर बिजी है शूटिंग में, ध्यान उधर लगा हुआ है, कह रहे मैं बताता हूँ। अब हम इंतजार कर रहे हैं, फिर उनका फोन आया, कह रहे हैं मैंने आपको एक वीडियो भेजा है वो देख लीजिए आप, सुन लीजिए। मैंने कहा सर आप बताइए ना कि उसमें क्या है और आप क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि साइंस ये कहती है कि जब सारे रंगों को हम मिलाते हैं तो सफ़ेद रंग बनता है, सारे रंगों को मिलाने से सफ़ेद रंग
0: जी,
1: बनता है। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है सर?
0: बिल्कुल सही बात है, सफेद रंग तो अपने आप में सफेद रंग है, उसमें कोई भी रंग मिलाएंगे तो वो तो दूसरा हो जाएगा।
1: तो हाँ, तो बोले नहीं ऐसे ही होता है, यही थॉट है। और ये गाना मुझे देशभक्ति इसमें होनी चाहिए और कौमी एकजहती होनी चाहिए,
0: जी, जी, जी।
1: ठीक है, पूरा देश एक साथ चलना चाहिए इस गाने में। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने उसको लिखा। मुश्किल गाना था बहुत
0: जी।
1: मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी,
0: बेहतरीन फिल्म थी,
1: डिफिकल्ट सिचुएशन थी
0: जी।
1: तो मैंने लिखा उसमें के पिया समाए जिया में मोरे पिया समाए, ये हुक है, उससे पहले लाइन आती है सात रंग हैं सातों पिया के,
0: सात रंग हैं सातों पिया के।
1: हाँ, सात रंग होते हैं
0: जी।
1: अब मुझे सफेद पर खेलना है और उसको ऐसा बनाना है उसमें पूरा देश एक साथ जुड़ना चाहिए, ठीक है, सारे समुदाय जो हैं वो एक साथ जुड़ने चाहिए, तो वो सारे जो हैं एक साथ जुड़ने चाहिए। तो अच्छा, अभी इसमें जो पिया है ये वो भी पिया है जो मतलब जो जमीन पे है ना, और वो भी पिया है जो खुदा है, ईश्वर है, भगवान है,
0: खुदा है,
1: हाँ, और महबूब भी है हमारा, ठीक है, डबल मीनिंग है। इस तरह के बहुत सारे लागा चुनरी में दाग और फलाना वो
0: छुपाऊं कैसे,
1: है ना, घर जाऊं, घर जाने का मतलब वो मरने के बाद की जिंदगी,
0: बिल्कुल,
1: है ना,
0: बिल्कुल, दो अर्थी।
1: तो हाँ, तो ये दो अर्थी ये भी मैंने इसको करके आगे बढ़ाया। सात रंग हैं सात

0: लेकिन इससे पहले भट्ट साहब के यहाँ मेरी पहली जो फिल्म थी वो थी जहर,
1: हाँ, जिसका गाना बहुत मशहूर हुआ था। फिल्म का गाना इनकी आवाज, श्रेया घोषाल की आवाज में जो गाना था, अगर तुम मिल जाओ, बहुत बहुत मशहूर हुआ था।
0: जी जी, तो ये गाना दरअसल पाकिस्तानी गाना था, ये उसको यहाँ पर अनु मलिक साहब ने रिक्रिएट किया था। रेशमा की आवाज में भी आपको मिल जाएगा वो गाना, कई लोगों ने गाया हुआ है, पुराना गाना है। और ये फिल्म मोहित सूरी की भी पहली फिल्म थी, मोहित सूरी थे इसके डायरेक्टर, वो भी मतलब उनके भट्ट साहब के भांजे होते हैं
1: जी।
0: और ये फिल्म बड़ी कामयाब रही, इसके सारे गाने सुपरहिट हुए और सारे गामा म्यूजिक कंपनी ने इसके गाने रिलीज किए थे। और हमें जो है वो पहली बार आउटस्टैंडिंग म्यूजिक सेल नाम से हमें ट्रॉफी बांटी गई, उसका एक फंक्शन हुआ, एक तकरीब हुई उसकी, और बड़े खुश थे वो लोग क्योंकि म्यूजिक बहुत बड़ा हिट था और फिल्म भी हिट हो गई थी, सिल्वर जुबली का भी उसका ट्रॉफी मिला था हम लोगों को। तो उसमें गाना था वो के ने गाया था वो, ऐ बेखबर ऐ बेखबर,
1: जी जी जी,
0: तो वो भी बहुत बेहतरीन गाना था। और एक गाना वो था जाने जा तुझसे बिछड़ के मैं जाऊं कहां, वो भी बहुत, सारे गाने ही बहुत हिट हुए थे उसके और बड़ी कामयाब फिल्म रही वो। तो वो पहली फिल्म थी मेरी भट्ट साहब के यहाँ।
1: जी जी, तो यहाँ पर कौन सा गाना सुनवाया श्रोताओं को?
0: आए बेखबर
1: सुनते हैं, हाँ। ये गाना

0: तो उन्होंने मुझे हरीश सगने से मिलवाया
1: जी जी,
0: और उनकी एक फिल्म आई थी 1921 जिसमें जरीन खान थी हीरोइन, और वो फिल्म भी बहुत अच्छी चली, हिट हुई पिक्चर, और उसके सारे गाने आप सुनेंगे बहुत अच्छे गाने।
1: थोड़ा सा हम पीछे क्यों चलते हैं, 2004 में जब आपकी पहली फिल्म आई थी, तो वो फिल्म कैसे मिली आपको, पहली फिल्म तक आप कैसे गए, वो तेरा नाम था?
0: वो तेरा नाम था बिल्कुल।
1: तो यहाँ मतलब फिल्मी दुनिया में आपका प्रवेश कैसे हुआ, हम तो एंटर कर चुके हैं लेकिन आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि शायरी की दुनिया से फिल्मी दुनिया में एंट्री कैसे हुई आपकी?
0: ये बात तब की है, 2000 का जो सन है उससे पहले की बात।
1: अच्छा,
0: तब मैं सूरत में रहता था
1: जी जी,
0: और सूरत से मैं बॉम्बे आता जाता था, पैसे जब तक होते थे यहाँ रहता था, पैसे खत्म होते थे फिर सूरत चला जाता था।
1: अच्छा।
0: फिर पैसे इकट्ठा करता था फिर आता था। तो इस आने जाने में मेरी मुलाकात दिलीप सेन समीर सेन से हुई। हाँ, दिलीप सेन से हुई और दिलीप सेन के साथ मेरा स्ट्रगल शुरू हुआ। तो दिलीप सेन एक फिल्म कर रहे थे, उसके गाने रिकॉर्ड कर रहे थे सहारा स्टूडियो में, जुल्मी, जुल्मी फिल्म थी अक्षय कुमार।
1: जी जी जी।
0: तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई यहाँ सहारा में आ जाओ और अपनी किताब लेके आना,
1: वहाँ तनवीर खान भी के
0: तो मैं वहीं आ रहा हूँ तनवीर खान साहब तक आ रहा हूँ मैं। तो मैं सूरत से अपनी एक किताब, मेरी पहली किताब छप चुकी थी धूप दरिया, तो वो 96 में छपी थी वो किताब, तो ये 96 से 2000 के बीच की बात है। तो मैं वो किताब लेके आया
1: जी।
0: और सहारा स्टूडियो में मैं बैठा था मिलने के लिए, तो तनवीर खान साहब की नज़र उस किताब पर पड़ी
1: जी।
0: उन्होंने कहा मैं देख सकता हूँ? मैंने कहा बिल्कुल देखिए। तो उन्होंने दो चार पेज इधर उधर पलटे और वो किताब जो थी उसका इंतसाब माँ के नाम था।
1: अच्छा।
0: हाँ, तो एक शेर जो है वो कैप्शन के तौर पर नीचे था कि अब भी सोते में ऐसा लगता है,
1: अब भी सोते में ऐसा लगता है, क्या बात है,
0: सर के नीचे तेरी हथेली है।
1: ओ क्या बात है।
0: ठीक है, तो ये शेर और कुछ शेर उनको बड़े पसंद आए। उन्होंने कहा यार ये किताब मुझे चाहिए। मैंने कहा ये तो मैं दिलीप सेन जी के लिए लाया हूँ, आप मुझे एड्रेस दे दें तो मैं सूरत जाऊँगा आपको भेज दूँगा। अच्छा, मैं उनको नहीं पहचानता था, वो मुझे नहीं पहचानते थे, जबकि तनवीर भाई ने बहुत सारे फिल्मों के डायलॉग, बड़ी कामयाब फिल्मों के डायलॉग लिख चुके थे, इस फिल्म के डायलॉग राइटर भी वही थे। तो मैंने वो किताब उनको सूरत जाके भेजी और वो किताब पढ़ के इतने इम्प्रेस हुए, वो किताब वो मेरी शायरी दोस्ती का जरिया बनी।
1: ओ क्या बात है।
0: तो हमारी दोस्ती हो गई। फिर उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपको फिल्मों में काम करना है तो आपको बॉम्बे आना पड़ेगा, मुंबई में रहना पड़ेगा आपको। अब मैं डरता था कि मैं कहाँ रहूँगा, क्या करूँगा, कैसे सरवाइव करूँगा, इसलिए मैं लेट हो रहा था मुंबई आने में। लेकिन फिर मैंने सोचा यार एक ना एक दिन तो ये कदम उठाना ही पड़ेगा, तो आज ही क्यों ना उठाया जाए। और इनसे मुझे बड़ी उम्मीदें थी तनवीर साहब से, क्योंकि ये बड़ी फिल्मों के डायलॉग राइटर होते थे
1: जी जी,
0: तो एक जरिया था। तो मैं सूरत से मुंबई आ गया 2001 फरवरी में
1: जी,
0: और फिर तनवीर भाई के साथ घूमना फिरना, उनके सेट पे जाना, शूटिंग में जाना, ये सब मीटिंग में उनके साथ जाना, ये सब हो रहा था। उसी जमाने में रूप भाई से मुलाकात मेरी थी
1: जी।
0: तो ये दो लोग थे जिनसे मेरी उम्मीदें जुड़ी थी। तो रूप भाई मेरे गाने कंपोज कर रहे थे। अच्छा, दोनों से एक दूसरे के बारे में मैं बात करता था। मैं इनसे कहता था भाई रूप भाई को सुन लीजिए, मेरे गाने उन्होंने कंपोज किए हैं। अरे मैं सुन के क्या करूंगा, मैं ना डायरेक्टर हूं ना प्रोड्यूसर हूं। तब वो डायरेक्टर नहीं बने थे, बाद में डायरेक्टर भी बने। तो ये जो फिल्म थी वो तेरा नाम था, इसके वो डायलॉग लिख रहे थे, और इस फिल्म के डायरेक्टर थे कुकू कोहली जी, और इस फिल्म के में मैं बात करता था। मैं इनसे कहता था भाई रूप भाई को सुन लीजिए, मेरे गाने उन्होंने कंपोज किए हैं। अरे मैं सुन के क्या करूंगा, मैं ना डायरेक्टर हूं ना प्रोड्यूसर हूं। तब वो डायरेक्टर नहीं बने थे, बाद में डायरेक्टर भी बने। तो ये जो फिल्म थी वो तेरा नाम था, इसके वो डायलॉग लिख रहे थे, और इस फिल्म के डायरेक्टर थे कुकू कोहली जी, और इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे बहुत बड़े आदमी, अलग बिजनेस से रेमंड के मालिक विजयपत सिंघानिया साहब, उन्होंने ये फिल्म प्रोड्यूस की थी। तो बड़े लोग बना रहे थे पिक्चर, अमरीश

साहब का इसमें बहुत बड़ा किरदार था। फिल्म उन्हीं की थी सच पूछो तो, बाकी दो लड़के और दो लड़कियां थी उसमें। तो उन्होंने कहा कि भाई रूप भाई को फ़ोन करो, उनको बुलाओ, मैं सेटिंग कराता हूँ कुक्कू जी के साथ, फिल्म कर रहा हूँ मैं। तो मैंने फ़ोन किया रूप भाई को, तो उन्होंने कहा कि मैं तो स्विट्ज़रलैंड या ऑस्ट्रेलिया में कहीं थे वो, मैं तो यहाँ हूँ। अरे मैंने कहा कि भाई ये सेटिंग करनी थी तो कब आएंगे, तो कुछ 15-15 दिन बताया कि बाद आऊँगा। तो खैर जब तक वो आते तब तक

0: तो इस तरह से वो टाइटल आया, वो तेरा नाम था। फिर उसमें मेरे दो गाने लिए गए और उसमें कतील शिफाई साहब का भी गाना है, निदा फाजली साहब का है, मतलब दो बड़े शायर और गीतकारों के साथ मेरी शुरुआत हुई फिल्म में। उसमें एक गाना था जो मेरी जिंदगी का पहला गाना, वो ये था कि तुबा हो रही है, भोपाल का माहौल है, 1947 मुल्क आज़ाद हुआ है और भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया जा रहा है। ये उस टाइम की कहानी थी और समद खान कोई वहाँ के बड़े क्लासिकल सिंगर थे, तो सुबह हो रही है और पूरा उस जमाने की एक्टिविटी थी वो सब हो रहा है और समद खान वो छत पे रियाज कर रहे हैं अपने महल के और उनकी बेटी जो फिल्म की हीरोइन है वो कहीं वादियों में गा रही है, तो ये सिचुएशन थी
1: जी।
0: और फिल्म इसी गाने से शुरू होती है, तो वो मैंने लिखा था, मुझे पसंद है वो जो राइटिंग है और वो गाना इतना, मतलब अलका जी ने गाया उसको और उनको इतना अच्छा लगा, उन्होंने अपनी माता जी को फ़ोन करके बुलाया और उनको सुनाया कि देखो आज भी ऐसे गाने लिखे जाते हैं। फिर वो गाना रिकॉर्डेड वो भाई ने ले जाके लता जी को सुनाया, है ना, दीदी मैंने ये मेरी पहली फिल्म शुरू हुई है ये गाना रिकॉर्ड किया मैंने, तो उन्होंने गाना सुना लता जी ने, तो डांटा उन्होंने प्यार से
1: कि मुझे,
0: अरे ये गाना तो मेरा था, तूने मुझसे क्यों नहीं गवाया,
1: क्या बड़ा कॉम्प्लीमेंट था।
0: हाँ, तो ये गाने में जो एक तो कंपोजिशन और दूसरे जो इसके लिरिक्स हैं के पूरे साहित्यिक, उसका मैं मुखड़ा सुनाता हूँ आपको। सुबह हुई दिन निकला है, सुबह हुई दिन निकल रहा है, तट पर नहा के सूरज सुनहरे कपड़े बदल रहा है,
1: क्या बात है,
0: सुबह हुई दिन निकल रहा है।
1: वाह, बहुत
0: cool। आपके उदयपुर के रेडियो स्टेशन पर ये सुबह इसी गाने से होती है, डेली ये गाना बजता है।
1: हम यहाँ पर कौन सा गाना सुनवाए,
0: मधोशी का टाइटल सॉन्ग सुना दे, मधोशी है मधोशी है।

0: आपको, लेकिन एक ऐसी तालीम है जो आपके भीतर आपने खुद से ली होगी। राम के वनवास पर आपकी बहुत सारी नज़में हैं, जिस पर किताब भी आई है और जिसका आप अक्सर जिक्र करते हैं, तो ये कहाँ से आइडिया आया, कहाँ से खोज की आपने, इतने बड़े फलक पर आपने कैसे कुछ कोशिश की, बताइए।
1: मेरी उर्दू में 8 किताबें हैं।
0: जी
1: मैं साहित्य से, उर्दू साहित्य से ही फिल्मों में और मंचों पर आया। 20 साल तक मैंने सिर्फ साहित्य लिखा, साहित्य के मैगजीन में छपता रहा। मैं बाद में इधर आया फिल्मों की तरफ और मंचों की तरफ। तो ये जो काम है मेरा, ये मैं जंगल पर लिख रहा था, जंगल पर लिख रहा था, और लिखते लिखते उसी दरमियान उर्मिला का जो किरदार है वो कहीं से मेरी ज़िंदगी में आया। उर्मिला जो लक्ष्मण की बीवी है, लक्ष्मण की जो पत्नी
0: जी
1: है,
0: जी
1: उस किरदार ने मुझको झकझोर के रख दिया, मुझे हिला दिया उस किरदार ने, उसके बलिदान ने, उसकी कुर्बानी ने।
0: कि वनवास होता है लक्ष्मण को 14 वर्ष का।
1: हाँ, और अहिल्या, ये दो ऐसे किरदार हैं जिन्होंने मुझे बहुत

तकरीबन सभी किरदारों पर नज़में लिखी, एक के बाद एक जीता गया और लिखता गया। इस तरह से वो पूरी एक अलग सी रामायण हुई। और पहले मैंने उसका नाम सोचा था जंगल यात्रा, उस किताब का, क्योंकि जंगल पे काम कर रहा था ना, तो उस किताब का एक बड़ा हिस्सा जंगल भी है, रामायण और जंगल दोनों हैं उसमें। तो वो मेरे लेखन

0: शेर में आता है, मैं सुनाता हूँ। ये जिंदगी भी एक महाभारत का युद्ध है।
1: क्या बात है, ये जिंदगी भी एक महाभारत का युद्ध है, वाह।
0: ये सीख है हम सबके लिए, ये जिंदगी भी एक महाभारत का युद्ध है
1: जी।
0: लड़ते रहो शकील, अंधेरा नहीं हुआ।
1: क्या बात है, वाह वाह वाह। तो अब अपने श्रोताओं से, हमारा तो दिल नहीं कर रहा है कि हम इजाज़त लें, और लग रहा है कि आपसे गुफ्तगू जारी रहे, और बहुत सारी अभी बातें हैं जो बाकी हैं आपसे पड़ताल करनी। आज़मगढ़ जैसे छोटे से शहर से आप मुंबई जैसे महानगर में आकर और इतना नाम रोशन किया है, शायरी की दुनिया में, फिल्मों की दुनिया में आपने नाम रोशन किया है, इसके लिए आपको पूरे विविध भारतीय परिवार की ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद हम दे रहे हैं, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब।
0: नमस्कार, शुक्रिया ममता जी।

0: जारी रहे और बहुत सारी अभी बातें हैं जो बाकी हैं आपसे पड़ताल करनी। आजमगढ़ जैसे छोटे से शहर से आप मुंबई जैसे महानगर में आकर और इतना नाम रोशन किया है, शायरी की दुनिया में, फिल्मों की दुनिया में आपने नाम रोशन किया है, इसके लिए आपको पूरे विविध भारती परिवार की ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद हम दे रहे हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शकील साहब
1: आप भी बहुत शुक्रिया
0: नमस्कार।
1: ममता जी।
2: जाने माने शायर और गीतकार शकील आजमी से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा और आखिरी भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन रीमा जोशी और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: रंग तरंग
1: विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग। अपने सभी श्रोताओं का हम इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं।

0: नशा एल्बम से ये गीत आप सुन रहे थे, ये गज़ल आप सुन रहे थे पिनाज मसानी की आवाज़ में। कतील शिफाई का कलाम था, पेलोडी मसानी की तर्ज थी।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
2: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो।

0: आप सुन रहे थे अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज़ों में ये गज़ल, रफ़ीक हुसैन और रफ़ीक जयपुरी की लिखी यह गज़ल थी, अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की तर्ज थी।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
0: हाँ, हर रोज दो सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।

0: तीन बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
0: हाँ, हर रोज दो सखियाँ तीन बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।

0: विजु शाह का सर्वधिकिया ये गीत आप सुन रहे थे। इंदिवर की रचना थी, आवाजें थी पंकज उदास और साधना सरगम की। मोहरा फिल्म का गीत आपने सुना।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
3: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
4: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जिया अली शचनाय बिद्दू और श्याम अनुरागी का लिखा ये गीता बिद्दू की तर्ज थी।
1: रंग

0: ये विविध भारती है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: अभी आप सुन रहे थे मुंबई केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। FM 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है। आइए प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: हम चर्चा करने जा रहे हैं। श्रोताओं की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है।
1: उत्सुकता तो बढ़ेगी ही, क्योंकि हमारा कार्यक्रम होता ही है मजेदार और जानकारियों से भरपूर। पता है, कुछ श्रोता तो रेडियो सुनते समय कागज कलम लेकर बैठते हैं और कुछ तो पूरा कार्यक्रम भी रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि कोई जानकारी न छूट जाए।
0: हम सभी सुधीर श्रोताओं को धन्यवाद देते हैं। तो क्या रहेगा आज हमारी चर्चा का विषय?

0: अपना जीवन चक्र पूरा करता है ना, तो भयंकर विस्फोट के साथ फट जाता है।
1: और हम चर्चा करने जा रहे हैं, श्रोताओं की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है।
0: उत्सुकता तो बढ़ेगी ही, क्योंकि हमारा कार्यक्रम होता ही है मजेदार और जानकारियों से भरपूर। पता है कुछ श्रोता तो रेडियो सुनते समय कागज कलम लेकर बैठते हैं और कुछ तो पूरा कार्यक्रम भी रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि कोई जानकारी न छूट जाए।
1: हम सभी सुधीर श्रोताओं को धन्यवाद देते हैं। तो क्या रहेगा आज हमारी चर्चा का विषय?

0: श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
1: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों जानना है ना इसके बारे में?
2: यस मैम।
1: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
2: अच्छा।
1: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
2: अच्छा।
1: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें, तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती है।
0: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
3: मैम, अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
1: बिल्कुल जरूर बताएंगे। अब जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
4: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है?
1: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुँचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
2: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
0: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
1: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
5: जी मैम, हमेशा याद रखेंगे।
0: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है? क्योंकि हम देखें तो

0: हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
1: धन्यवाद सर।
2: धन्यवाद मैम।
3: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति

0: कई छोटी बड़ी नदियां इस देश से होकर बहती हैं और इसे हरा भरा बनाए रखती हैं। लेकिन अक्सर इन नदियों में बाढ़ आ जाती है और गांव के गांव डूब जाते हैं। आज सुनते हैं व्हाइट वोल्टा नदी के किनारे बसे एक ऐसे ही गांव के आदिवासियों की कहानी।
1: नमस्कार भाई।
2: नमस्कार भाई, नमस्कार।
1: इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अभी तो खेत में काम करने का समय नहीं हुआ।
2: अरे आज खेतों में नहीं, जंगल में काम करने जा रहा हूँ। ये देखो कुल्हाड़ी।
1: अरे ये क्या, हल वाले हाथ में कुल्हाड़ी लकड़ी काटने जा रहे हो? क्या नया घर बना रहे हो?
2: हाँ भैया, नया घर तो बन रहा है, लेकिन मेरा नहीं, अपने मुखिया बानगुई है ना, वही अपना नया घर बनवा रहे हैं।
1: मुखिया बांगुई का नया घर? लेकिन अभी कुछ ही बरस पहले तो उन्होंने नया घर बनवाया था।
2: तो क्या हुआ, उन्हें अपना वो नया घर अब पुराना और छोटा लगने लगा है। दरअसल जंगल की लकड़ी

0: अच्छा भाई, मैं भी चलता हूँ।
1: कहाँ बड़े चले आ रहे हो? अरे जानते नहीं ये मुखिया बानगुई का मकान है?
2: जानते हैं भाई, जानते हैं, तभी तो अपनी फरियाद लेकर यहाँ आए हैं।
1: मैं कहता हूँ भाग जाओ यहाँ से।
2: अरे भाई, ये भी कोई
1: इस समय कोई फरियाद वरियाद नहीं सुनी जाएगी। अभी मुखिया जी बांसुरी बजा रहे हैं और जब वो बांसुरी बजा रहे हो तब उन्हें तंग करने का हुक्म नहीं है।
2: लेकिन अगर मुखिया जी हमारी फरियाद नहीं सुनेंगे तो हम कहाँ जाएंगे भैया?
1: अच्छा भाई बोलो, क्या बात है बोलो।
2: मैं बोलो। अच्छा अच्छा, देखो भैया, तुम भी तो हम ही में से एक हो। गांव की हालत तुमसे छुपी नहीं है। मुखिया जी के सारे खेत खाली पड़े हैं, उनमें काम करने वाले मजदूर बेकार हो गए हैं। जिनके पास थोड़ी बहुत अपनी जमीन थी, जहां खेती करके थोड़ा अनाज हो जाता था, उन सारे खेतों में बाढ़ का पानी भर गया है भैया। बारिश के मौसम में लकड़ी की कटाई का काम भी बंद हो गया है। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं भैया, इसीलिए हम मुखिया जी के पास आए हैं।
1: अरे तो इसमें मुखिया जी क्या कर सकते हैं?
3: सुना है मुखिया जी के मकान के एक पूरे खंड में अनाज भरा है। अगर इस संकट के समय हम गरीबों को भी एक एक मुट्ठी अनाज मिल जाता तो।
1: अच्छा, और मुखिया जी क्या फाके करें? मैं कहता हूँ भाग जाओ यहाँ से।
4: एक बार की बात है, उस इलाके में मूसलाधार वर्षा हुई।

你莫管，你莫管，你搞好中没？没，你把你们丢不了没？阿拉没羊，先生不走，阿拉跪下，跪下，阿拉不走，不走，不见，阿拉没丢不了，丢不了没？你个，ये लगता है कोई कोई पेड़ अब भी अपनी मजबूत जड़ें धरती पर धंसाए बैठा है। अगर अगर किसी तरह मैं उसे पकड़ लूं तो मेरी जान बच सकती है। हाँ, मैं उसे पकड़ूंगा, मैं उसे पकड़ूंगा, किसी तरह मैं उसे पकड़ लूं। मैं भाई, लेकिन लेकिन ये पानी तो मुझे मुझे दूसरी तरफ बाहर ले जा रहा है। मैं कोशिश करूंगा, उस पेड़ तक जाने की कोशिश करूंगा मैं। वो पेड़, आखिर आखिर पहुंच ही गया। यहां तो इस तरह के कितने ही पेड़ थे जो जो मैंने कटवा दिए, लेकिन ना जाने यही एक इकलौता पेड़ मुझे शरण देने के लिए कैसे बच गया। शायद शायद मेरी मेरी आंखें खोलने के लिए, हाँ, शायद मेरी आंखें खोलने के लिए

0: बांगुई, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से बोल रहे हैं FM 103.2 MHz पर। आइए फिर से प्रस्तुत है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

0: गीत आपने सुना आशा भोसले की आवाज में, फिल्म थी ये रात फिर ना आएगी।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: आनंद बख्शी का लिखा सूरज और चंदा फिल्म का गीत आपने सुना, मोहम्मद रफी की आवाज में, तर्ज थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से। ये आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है, FM 103.2 MHz पर। दिन के 1 बजने को ही कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार जयपुर अजमेर केंद्र से।

0: समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर कहा है कि डिजिटल इंडिया विकसित और आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव है। उन्होंने आज सोशल मीडिया पर कहा कि पिछले 11 वर्षों में डिजिटल इंडिया अभियान ने गरीबों और वंचितों के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तथा देशवासियों के जीवन को अधिक सुगम बनाया है। उन्होंने कहा कि ये पहल देश में सुशासन, पारदर्शिता और डिजिटल सशक्तिकरण को नई दिशा दे रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि ई गवर्नेंस से प्रशासन और जनसेवाओं की पहुंच में व्यापक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया अभियान और यूपीआई जैसी पहलों से आम नागरिकों को बहुत सुविधा मिली है तथा छोटे व्यापारियों और रेहड़ी पटरी कारोबारियों को भी इसका लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री आज जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एआई और साइबर सिक्योरिटी प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा की गई कई महत्वपूर्ण पहलों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि राज्य में एआई और मशीन लर्निंग AI/ML नीति लागू की गई है। साथ ही राजस्थान संपर्क पोर्टल जन शिकायतों के निस्तारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
1: राजस्थान संपर्क आज प्रदेश भर में जन अभियोग निवारण का प्रभावी मंच बन चुका है। इस प्लेटफॉर्म पर हर महीने 2.5 से 3 लाख शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण हो रहा है। मैं खुद राजस्थान संपर्क पर आने वाली जन शिकायतों को सुनता हूं और हर शिकायत का प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित भी करता हूं। हमारा मानना है कि डिजिटल तकनीक

0: डॉक्टर सौम्या झा ने दल को दुर्घटना के सभी पहलुओं की गहन जांच कर जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि आज अल सुबह धनावड़ा के पास एक स्लीपर बस और ट्रेलर की टक्कर के बाद आग लगने से बस में सवार 8 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 20 से अधिक लोग घायल हो गए थे। घायलों का उपचार विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। प्रदेश के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यान आज से पर्यटकों के लिए बंद हो गए हैं। मॉनसून और वन्य जीवों के प्रजनन काल को देखते हुए 30 सितंबर तक पर्यटन गतिविधियों पर अस्थायी रोक रहेगी। इस दौरान वन्य जीवों के लिए अनुकूल वातावरण बनाए रखने और वन क्षेत्रों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पाली जिले के जवाई वन्य जीव क्षेत्र में 1 अक्टूबर से फिर से सफारी का संचालन हो सकेगा। इसी तरह सरिस्का टाइगर रिजर्व का कोर एरिया भी पर्यटकों के लिए बंद होगा, हालांकि बफर क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियां जारी रहेंगी। उधर सवाईमाधोपुर स्थित रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में पिछले वर्ष 1 अक्टूबर से शुरू हुआ पर्यटन सत्र कल समाप्त हो गया। बीते पर्यटन सत्र में 6,77,000 से अधिक देशी विदेशी पर्यटकों ने राष्ट्रीय उद्यान का भ्रमण किया, जिससे राज्य सरकार को लगभग 70 करोड़ रुपए की आय प्राप्त हुई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: FM 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है। मुंबई केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम फिर से प्रस्तुत है।

महल के दस्तरबाजी, बहुत सारे गीत इन्होंने लिखे हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत का मुख्य विषय भ्रम और यथार्थ तथा प्रेम की अनुभूति है। यहाँ तार्किक सत्य के बजाय खुशफहमियों के रोमांटिक संसार की को तरजीह दिया गया है, क्योंकि यही जीवन और प्रेम को जीने का हौसला देते हैं। भाषा बेहद काव्यात्मक, तो जब भी मुस्कुराता है पलकों के पीछे से कचरारे कचरारे, ये दिल ना होता बेचारा, रंग महल। और एक और जिन्होंने कुछ शब्द इसमें से चुने हैं, ये शब्द हैं कि चांद पलकों के पीछे, रंग महल, हसीना, चोरी।

तू जब भी मुस्कुराता है पलकों के पीछे से कचरारे कचरारे ये दिल ना होता बेचारा, रंग महल और एक और होता, जिन्होंने कुछ शब्द इसमें से चुने हैं। ये शब्द हैं कि चांद पलकों के पीछे, रंग महल, हसीना, चोरी।

महल के दस्तरबाजी, बहुत सारे गीत इन्होंने लिखे हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत का मुख्य विषय भ्रम और यथार्थ तथा प्रेम की अनुभूति है। यहाँ तार्किक सत्य के बजाय खुशफहमियों के रोमांटिक संसार की को तरजीह दिया गया है, क्योंकि यही जीवन और प्रेम को जीने का हौसला देते हैं। भाषा बेहद काव्यात्मक, तो जब भी मुस्कुराता है पलकों के पीछे से कचरारे कचरारे, ये दिल ना होता बेचारा, रंग महल। और एक और जिन्होंने कुछ शब्द इसमें से चुने हैं, ये शब्द हैं कि चांद पलकों के पीछे, रंग महल, हसीना, चोरी।

0: में हैं, और क्या रोल है उनका इस फिल्म में, आप बता सकते हैं?
1: रवि

को लेकर थी, और अगर आपने ये फिल्म देखी हो तो बड़ी खूबसूरत फिल्म थी। वल्लभ भाई पटेल का लिखा ये गीत था, लता मंगेशकर भूपेंद्र की आवाजें थी। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि वो चांद खिला, वो तारे हंसे, आंखों में काजल, नैनों में बदरा छाए, और बहुत सारे गीतों को इन्होंने चुना है। एक और श्रोता लिखते हैं कि रिश्तों की डोर को हकीकत से ज्यादा गलत फहमियां कमजोर करती हैं, सच्चाई और बातचीत के अभाव में पनपी ये अजब फहमियां करीबियों में दूरियां पैदा करती हैं, गलत फहमी ने बातों को बढ़ा डाला यूं ही, वरना कहना कुछ था वो कुछ समझे और मुझे कुछ और कहना था। जी हाँ, लेकिन अगर ये गलत फहमियां हो जाएं तो आप एक काम कर सकते हैं कि मोबाइल पर बात कर सकते हैं या फिर अपनी तरफ से ही कुछ मना सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि अगर आपके बीच कोई अनबन हो जाए तो आप एक दूसरे को किस तरह से मनाते हैं, ये गलत फहमियाँ किस तरह से दूर करते हैं, क्योंकि ये भी समझदारी की ही बात होती है। श्रोताओं, गलत फहमियों में कुछ रखा नहीं है, जो खुशफहमियाँ हैं वो और गलत फहमियाँ, इन दोनों में बड़ा बारीक सा रेशम के अंतर होता है, इसे पहचानने की ज़रूरत है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि आज के गाने, एक जब दीप जले आना जब शाम ढले जाना, दो दिल के टुकड़े टुकड़े करके, और इन्होंने भी अपनी जो एक लिस्ट है वो बनाई है। एक और श्रोता लिखती है, फहमियाँ रिश्तों में दूरियां बढ़ाती हैं जबकि खुशफहमियाँ मुस्कुराने का एक बहाना बन जाती हैं। जब मन की धुंध छट जाती है, बदगुमानी के बादल हट जाते हैं और विश्वास के दीप जल उठते हैं, तब मोहब्बत अपने असली रंग में खिलती है। लेकिन हर गलत फहमी बुरी नहीं होती, कुछ खुशफहमियाँ रिश्तों में महक बनकर रहती हैं, विरेत के समंदर में

शशि कपूर एक इंजीनियर के किरदार में होते हैं श्रोताओं। सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म का ये गीत था। इस फिल्म में बड़ी अजब सी ये गलतफहमी थी जो चेहरे

खिलती है, लेकिन हर गलत फहमी बुरी नहीं होती। कुछ खुश फहमियाँ रिश्तों में महक बनकर रहती हैं, विरेत के समंदर में दूर दिखाई देती हैं, उस नमी की तरह जो भले ही हाथ में ना आए लेकिन सफर को उम्मीद और दिल को मुस्कान दे जाती है। जब रेत की बात है श्रोताओ, तो रेत में अगर आप दूर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि नदी है या समंदर है, इसे क्या कहते हैं? अगर आप बताना चाहें तो ज़रूर बताएं। और एक और बात है कि कस्तूरी मृग जो है उसे हमेशा ये गलतफहमी होती है कि कस्तूरी कहीं और है, इस बारे में आप क्या जानते हैं तो हमें ज़रूर बताएं। इस फिल्म में एक्ट्रेस के दो रोल को आपको बताना है नाम।

खिलती है, लेकिन हर गलत फहमी बुरी नहीं होती। कुछ खुश फहमियाँ रिश्तों में महक बनकर रहती हैं, विरेत के समंदर में दूर दिखाई देती हैं, उस नमी की तरह जो भले ही हाथ में ना आए लेकिन सफर को उम्मीद और दिल को मुस्कान दे जाती है। जब रेत की बात है श्रोताओ, तो रेत में अगर आप दूर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि नदी है या समंदर है, इसे क्या कहते हैं? अगर आप बताना चाहें तो ज़रूर बताएं। और एक और बात है कि कस्तूरी मृग जो है उसे हमेशा ये गलतफहमी होती है कि कस्तूरी कहीं और है, इस बारे में आप क्या जानते हैं तो हमें ज़रूर बताएं। इस फिल्म में एक्ट

रेत पर आ गए और चांद से रेत पर आ गए और बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार भी हुए हो गए। इस साजिश में कब फंसे पता भी नहीं चला। एक और श्रोता लिखते हैं कि ज्वेलथीफ का जो गीत हमने आपको सुनाया उसमें मछली पकड़ने का कांटा और साथ में उसमें फंसी मछली है। जी हाँ, एक सवाल और पूछा था कि कौन है उसमें मुख्य अभिनेत्री, तो वैजयंती माला थी। एक और श्रोता ने लिखा है, अगर दिल से एहसास उम्मीदें और ये प्यारे भ्रम निकाल दिए जाएं तो जीवन एक अंतहीन रेत के समंदर जैसा बंजर हो जाएगा, जहां फैलाव तो बहुत होगा कि एक बूंद भी नसीब नहीं होगी। वास्तव में हमारी कल्पनाएं ही इस रसीन जिंदगी में रस घोल हैं, जैसे कस्तूरी अपनी खामोश खुशबू से पूरे माहौल को महका देती है, ठीक वैसे ही जज्बात खिलती है। लेकिन हर गलतफहमी बुरी नहीं होती, कुछ खुशफहमियां रिश्तों में महक बनकर रहती हैं, विरेत के समंदर में दूर दिखाई देती हैं, उस नमी की तरह जो भले ही हाथ में ना आए लेकिन सफर को उम्मीद और दिल को मुस्कान दे जाती है। जब रेत की बात है श्रोताओं, तो रेत में अगर आप दूर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि नदी है या समंदर है। श्रोता लिखते हैं, इबारत के लिखने के दायित्व को सौंपने के क्रम में अग्रसर हो रही प्रस्तुत आज की इबारत मन के भेदों में निहित अंतर्द्वंद को भली भांति स्पष्ट कर रही है और इस दृष्टिकोण से ही आज की ये इबारत स्वयं में ही इबादत करने योग्य है। एक और श्रोता लिखती है कि मालूम है कि ख्वाब झूठे हैं, ख्वाहिश अधूरी, मगर जिंदा रहने के लिए कुछ गलत फहमियां

इस गीत में श्रोताओं और इस फिल्म में सांपों के बारे में बहुत कुछ है या सांप के बारे में बहुत कुछ है। वैसे रस्सी और सांप, इनमें तो बहुत गलत फहमियाँ होती हैं। क्या आपको हुई हैं?

नागिन फिल्म का ये गीत आपने सुना। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि खुश फहमियाँ और गलत फहमियों में के बीच क्या क्या होता है, दो दिलों में कैसी कैसी शरारतें पैदा होती हैं, तरह तरह के गीतों का मजा लेते हैं इस कार्यक्रम में। एक और श्रोता लिखते हैं कि गलत फहमियाँ जिंदगी में अक्सर गलत फहमियाँ हो जाती हैं, कभी हम व्यर्थ की खुश फहमी पाले रहते हैं, परिणाम जब इसके विपरीत आते हैं तो पता चलता है। एक और श्रोता लिखते हैं कस्तूरी सुख है, हिरण रूपी चैतन्य आत्मा में कस्तूरी सुख है और नाभि यानी वर्तमान पर्याय में है। जी हाँ, ये तो है ही है, काव्यात्मक तरीके से आपने लिखा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। लेकिन हमने आपसे ये पूछा था कि कस्तूरी मृग क्यों वन वन घूमता है। जी हाँ, वो तो कस्तूरी की सुगंध के पीछे घूमता है श्रोताओं, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जो कस्तूरी है वो कहीं और है, लेकिन ये तो कोरा भ्रम होता है, वो तो उसकी नाभि में होती है। इसलिए हमने आपसे ये सवाल पूछा था और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने इस सवाल के जवाब को दिया भी है, देने की कोशिश भी की है। एक और श्रोता लिखते हैं कि कई दिनों से घरवाली के साथ शीत रहा है, सिर्फ इन्होंने बड़ी ही बड़े प्यार से कह सकते हैं कि कमेंट लिख दिया है कि घरवाली के साथ शीत युद्ध चल रहा है, सिर्फ मूछों को लेकर संसार आसार है, छोटी छोटी बातों पे बवाल होते रहते हैं। जी हाँ, लेकिन ये जो छोटी छोटी सी बातें हैं

थे ये फिल्म थी श्रोताओं, और अभी तक जो गीत हमने लिए हैं वो ऐसी ही फिल्मों से हमने लिए हैं। तो ये जो फिल्मों के गीत आप सुन रहे हैं इनमें कौन सी फिल्म आपको ज़्यादा पसंद है ये आप चाहें तो बता सकते हैं। और गोलमाल फिल्म के कैरेक्टर जो हैं उनके बारे में हमने आपसे पूछा था, अमोल पालेकर के बारे में, और एक फिल्म संजीव कुमार की थी जिसमें देवेंद्र वर्मा, और ये शेक्सपियर के उपन्यास पर थी।

मतलब ये है कि यहाँ भी हमें गलतफहमी होती है, जी हाँ कई बार। और एक और श्रोता ने लिखा है कि साधना जो दो रोल में है मेरा साया फिल्म में, एक सुनील दत्त की पत्नी और दूसरी डाकू के गिरोह की सदस्य थी। एक सवाल आपसे पूछते हैं श्रोताओं कि दो जो गायिकाएं हैं उनके नाम आप पहचानिए और सोचिए कि जब आप उनके गीत सुनते हैं तो क्या आपको कोई गलतफहमी होती है कि ये गीत किसने गाया है, इन्होंने गाया या इन्होंने गाया।

अच्छे अच्छे और फिल्म का ये गीत आप सुन रहे हैं और हमने जो आपसे सवाल पूछा था श्रोताओं, इस फिल्म में सुनील और विनोद के बीच एक बड़ी गलतफहमी होती है। गोलमाल फिल्म में राम प्रसाद और लक्ष्मण प्रसाद हैं और अंगूर में संजीव कुमार और देवेंद्र वर्मा क्रमशः अशोक और बहादुर की भूमिका में।

0: Pakhtunkhwa provinces. The strikes inflicted heavy casualties and significant financial losses on ISIS and its supporters. It added that the attacks were carried out with high precision against designated targets and caused no civilian casualties. The strikes came just days after 36 civilians, including women and children, were killed while 163 others were injured in Pakistani military airstrikes in Paktika and Kunar provinces of Afghanistan. National Doctors' Day has been celebrated today to honor doctors for their dedication, compassion and invaluable contribution to protecting and improving public health. The day is observed every year on the 1st of July. He struck twice to take his World Cup tally to 18 goals, now two clear of Miroslav Klose and only one behind Lionel Messi. Norway has also sailed to the round of 16, beating Ivory Coast 2-1 in Texas. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says 11 years of Digital India empowered the poor and the underprivileged, making life easier for millions. Increased wages under Viksit Bharat Ji Ramji Act become effective from today. Union Minister Shivraj Singh Chauhan and Kiran Rijiju undertake aerial survey of flooded areas of Arunachal Pradesh. Newly appointed Army Chief General Dheeraj Seth stresses on modernization of army to tackle challenges of evolving security environment. Afghanistan attacks ISIS targets in Pakistan. Monsoon likely to advance to Delhi, Haryana, Chandigarh and Punjab in the next 2 days. And in FIFA World Cup, Mexico defeat Ecuador 2-0 to enter round of 16. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला किया मॉनसून के दो दिन में दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना और फीफा वर्ल्ड कप में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई अब समाचार विस्तार से डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं इस पहल से देश भर में नागरिकों के जुड़ने सीखने लेन देन करने और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के तरीके को बदल दिया है पिछले 11 वर्ष में भारत ने बड़े पैमाने पर दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम में से एक को तैयार किया है एक रिपोर्ट
2: भारत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो सकने वाले और नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म की मदद से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर रहा है भारत ने इंडिया स्टैक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सहयोग के लिए 24 देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं इन समझौतों में डिजिटल पहचान डिजिटल भुगतान डेटा साझा करने और सरकारी सेवाओं की डिजिटल व्यवस्था जैसे क्षेत्र शामिल हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई अब संयुक्त अरब अमीरात सिंगापुर फ्रांस मॉरिशस और श्रीलंका समेत 8 से अधिक देशों में उपलब्ध है आधार डिजीलॉकर कोविन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस दीक्षा उमंग और ई संजीवनी जैसे भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म दुनिया के कई देशों के लिए डिजिटल शासन के मॉडल बन रहे हैं डिजिटल इंडिया अभियान अब अपने अगले दशक में प्रवेश कर रहा है इसके साथ भारत तकनीक को समावेशी विकास डिजिटल सशक्तिकरण और वैश्विक सहयोग का मजबूत माध्यम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है अमन यादव आकाशवाणी समाचार दिल्ली
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार करके डिजिटल शासन को मजबूत करके

0: कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए

डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण

0: ये आकाशवाणी है। अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान में आईएसआईएस से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। अफगान मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये हमले कल रात पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में आईएसआईएस के ठिकानों पर किए गए। इन हमलों में आईएसआईएस और उसके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचा और आर्थिक रूप से भी
1: डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण।
0: फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हरा दिया है और अंतिम 16 में पहुंच गया है। इससे पहले फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से और नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया, इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से। केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से। केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला किया। मानसून के 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: तो थोड़ी समय के लिए सही छातों को एक तरफ रख दीजिए और थोड़ा बारिश में निकल के तो देखिए
1: उसका एक अलग ही मजा है ना। बचपन की यादें हमें है कि हम कितना भीगा करते थे और कभी माता पिता भी नहीं कुछ कहा करते थे, जैसे आजकल कह देते अरे बेटा मत भीगो, जुकाम हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, खांसी हो जाएगी। हमारे माता पिता भी हमें नहाने देते थे बारिश में और हम नहाया करते थे और इतनी इम्यूनिटी मजबूत हुआ करती थी कि मुझे याद नहीं कि कभी बीमार पड़े हूँ बारिश में भीग के। हाँ कभी कभार ऐसा हो गया होगा कि सर्दी लग गई है, लेकिन बड़ा मजा आता था स्कूल कॉलेज के दिनों में भी, जब भीग कर साइकिल चलाते हुए आते थे वो दिन बहुत याद आते हैं।
0: बहुत सच में बारिश जो होती है ना एकदम सब कुछ बदल देती है, सब कुछ हरियाली सब जगह छा जाती है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे पूरा आप देखें जंगल हो या कहीं भी छोटा सा भी पेड़ होगा ना वो भी एकदम खिल उठता है जब बारिश की बूंदे पड़ती
1: है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ऐसे ही जब मन पर कुछ बूंदे ऐसी गिरती हैं तो मन भी खिल उठता है, संगीत की कुछ बूंदे जब गिरती हैं तो हमारा मन खिल उठता है। लेकिन हाँ उससे पहले हमें ये भी बताना है कि आज हम अपनी सखियों और सखाओं के लिए क्या क्या लेकर आए हैं।
0: तो आज हम लेकर आए हैं, सबसे पहले हम बात बता दें आपको, हम साड़ियों का जो

0: तो थोड़ी समय के लिए सही छातों को एक तरफ रख दीजिए और थोड़ा बारिश में निकल के तो देखिए
1: उसका एक अलग ही मजा है ना। बचपन की यादें हमें है कि हम कितना भीगा करते थे और कभी माता पिता भी नहीं कुछ कहा करते थे, जैसे आजकल कह देते अरे बेटा मत भीगो, जुकाम हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, खांसी हो जाएगी। हमारे माता पिता भी हमें नहाने देते थे बारिश में और हम नहाया करते थे और

0: तो मन तो भीग गया है रिमझिम गिरे सावन
1: जी बिल्कुल, इतना प्यारा गाना है ना, एकदम सावन की खुशबू आती है, इससे मिट्टी की खुशबू आती है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और वही बात की मिट्टी की सौंधी खुशबू हम पसंद करते हैं और बरसात मानसिक सपोर्ट भी करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: मतलब हमारा मानसिक इलाज भी कर देते, अरे डरो मत, ठीक हो जाओगे, सब ठीक होगा, कुछ नहीं हुआ है।
1: ये एक जो चीज होती है ना, जो आप हम मानसिक जो आधार दे देते हैं ना, तो वो बहुत फायदेमंद भी होता है ना, कि आधी जो बीमारी होती है ना, क्योंकि कभी कभी बहुत ज्यादा घबराहट हो जाती है कि पता नहीं क्यों नहीं बुखार उतर रहा है, पता नहीं क्या परेशानी है, तो जब हम डॉक्टर को दिखाते हैं, जब हमें वो बताता है कि

0: बात इन्होंने लिखी है और हमने अपने कितने ही सारे श्रोताओं के विचार पढ़े हैं और अब एक संदेश सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।

0: बात इन्होंने लिखी है और हमने अपने कितने ही सारे श्रोताओं के विचार पढ़े हैं और अब एक संदेश सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने

0: सुधारने और निरंतर बेहतर बनने की प्रेरणा भी देती है।
1: बिल्कुल। और एक श्रोता है जो लिखते हैं कि प्रतियोगिता हम सभी के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। जन्म से लेकर जीवन के हर पड़ाव तक हम किसी न किसी रूप में इस चीज को देखते ही रहते हैं।
0: और एक श्रोता लिखते हैं,

0: पकौड़ा बनकर बाहर निकलता है। इसलिए जब भी जिंदगी आपको मुश्किलों के खौलते तेल में डाले तो घबराइए मत, समझ लीजिए कि आप और भी ज्यादा मजेदार बनने वाले। क्या
1: बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत
0: मतलब
1: शानदार,
0: ऐसी तो मतलब सोच नहीं सकते।
1: बिल्कुल, इन्होंने देखिए कितना इसको काव्यात्मक तरीके से, क्लासिक तरीके से पेश किया है, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा लिख भी सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो ये लेखन जारी रखें, आगे भी हमें इसी तरह से है ना अपने विचार प्रकट करें, तो कार्यक्रम का मजा जो है मजा दोगुना हो जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: एक श्रोता ने लिखा है कि भारत के सबसे लोकप्रिय और पसंदीदा स्नैक्स में से एक है पकौड़े। ये मुख्य रूप से बेसन, मसाले और अपनी पसंद की कटी हुई सब्जियां जैसे कि प्याज, आलू, पालक को मिलाकर बनाया जाता है, और बारिश के मौसम और

0: मैं गंभीर साहित्य से जुड़ा, पढ़ने लगा, बहुत सारे साहित्यकारों को पढ़ा, और दिल्ली में आने के बाद मैंने औपचारिक लेखन शुरू कर दिया था।
1: जी, तो हरिशंकर जी, आप एक प्रखर भाषाविद हैं, अनेक पुस्तकों की लेखनी आपने की है, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा के आप ज्ञाता हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि कोई विशेष भाषा आपके विचारों की गहराई को सीमित करती है, या भाषा हमेशा विचारों की विस्तारक होती है?
0: जी नहीं मंदाकिनी जी, मुझे लगता है कि जितनी ही भाषाओं का ज्ञान हो, मनुष्य उतना ही मजबूत, उतना ही सुदृढ़ और उतने ही बड़ी सोच का हो जाता है।
1: जी,
0: तमाम भाषाओं को जानने की मेरी इच्छा थी। तीन भाषाओं पर ही मेरी कुछ पकड़ हो सकी है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत पर। मुझे बल्कि इस बात का कई बार मलाल होता है कि मैं चार छह भाषाएं और क्यों नहीं
1: जी,
0: जान सका।
1: जी,
0: कुछ देसी बोलियों को भी मैं जानता हूँ ठीक से, उनको बोलता भी हूँ। तो भाषाएं पुल का काम करती हैं, जोड़ने का काम करती हैं, और हर भाषा में कुछ न कुछ अतिरिक्त ज्ञान होता है, उसे प्राप्त करके अपने विचारों को, अपने साहित्य को आगे बढ़ा सकते हैं। ये हमेशा जोड़ती हैं, तोड़ने का काम नहीं करती हैं भाषाएं।
1: तो हरिशंकर जी, आपने तो व्यंग्य विधा, ललित निबंध और यात्रा संस्मरण

0: दो तीन राजनीतिक दलों को जोड़ करके, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी मुख्यमंत्री ने एक सरकार बना ली और उसमें मंत्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई
1: जी।
0: कहीं न कहीं ये विसंगत थी कि हमारे प्रदेश के, हमारे देश के जो संसाधन हैं उन सबका प्रयोग इतने बड़े मंत्रिमंडल पर होगा और ये जोड़ तोड़ करके बनाया गया संगठन कभी चलेगा नहीं। वहीं से मेरा पहला व्यंग शुरू हुआ था और उसके बाद जब उसकी प्रशंसा हुई, उत्साहवर्धन हुआ, तो मैं और आगे लिखता गया
1: जी। यानी वो प्रोत्साहन आपको उस घटना के बाद
0: जी,
1: मिला
0: जी।
1: तो राडी साहब, बातचीत तो हमारे बीच चल ही रही है, इस बीच एक आपकी पसंद का गीत सुन लिया जाए।
0: मुझे थोड़ा सा मेलोडी वाले गाने बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, तो लता मंगेशकर जी का एक गीत है फिल्म ममता से, रहे ना रहे हम महका करेंगे,
1: क्या बात?
0: बड़ा सकारात्मक गीत है, मुझे बहुत अच्छा लगता
1: है। बहुत सुंदर क्लासिक गीत है ये, आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: और साहित्य के शनिदेव
1: जी,
0: ये सबकी लेखन यात्रा के बारे में आप हमें थोड़ा बताइए।
1: जी, मैंने व्यंग लेखन सन 1998 से शुरू कर दिया था और मैं व्यंग में सबसे अधिक प्रभावित था हरिशंकर परसाई से।
0: जी,
1: व्यंग के पिता

0: बहुत लंबे व्यंग भविष्य में ज्यादा चल पाएंगे। हाँ, यह है कि बहुत छोटे भी उसकी तीव्रता को कम करते हैं, मध्यम आकार के व्यंग चलते रहेंगे। एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा कि व्यंग में उपन्यास काफी लिखे गए हैं, लेकिन आज तक श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी का मुकाबला कोई कर नहीं
1: हो पाया जी।
0: ऐसा लगता है कि यह व्यंग अपने आप लिखा गया था, क्योंकि वैसा व्यंग उपन्यास कोई लिख नहीं पाया। कुछ और लोगों ने, हमारे समय के व्यंगकारों ने व्यंग उपन्यास लिखे हैं। ज्ञान चतुर्वेदी ने 7-8 व्यंग उपन्यास लिखे हैं, कई और लोगों ने लिखा है, नाम किसका लें किसका ना लें। वो श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी की तीव्रता उसमें नहीं आ पाई है, इसलिए मुझे लगता है कि उपन्यास तो चल जाएंगे अगर उसमें

0: प्रतीक मान करके लिख सकते हैं, किसी पशु को या किसी भी तत्व को आप प्रतीक बना करके व्यंग लिख सकते हैं और वो संकेतों में अपनी बात को गंभीरता पूर्वक कह जाए। तो व्यंग हमेशा उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए, निरर्थक निर्देश नहीं होना चाहिए। साहित्य तो कोई भी नहीं होना चाहिए निर्देश।
1: जी हरिशंकर जी, बात चल रही थी आपकी व्यंग लेखन पर और बातचीत तो हमारे बीच चल ही रही है
0: जी,
1: तो एक गीत सुन लिया जाए इस बीच।
0: जी जरूर, कुदरत फिल्म का गीत है, किशोर कुमार जी का ही, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना।
1: क्या बात है?
0: ये मैं चाहूंगा कि आप सुनाएं।
1: आइए सुनते हैं।

0: लेकिन मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि यात्रा संस्मरण एक साहित्यिक विधा है, और साहित्यिक विधा केवल मनोरंजन नहीं करती है, मनुष्य को सिखाती है, उसके हित की बातें बताती है। जब एक साहित्यकार यात्राएं करता है खास करके, तो वहाँ वो जिस जगह पे गया है वहाँ की संस्कृति, वहाँ की सभ्यता, वहाँ के खान पान, वहाँ के लोग को समझता है, और समझ करके वह उनको अपने संस्मरण में दर्ज करता है। अगर हम उनको आज के जो सोशल मीडिया के साधन उनसे जोड़ें तो आपको सूचनाएं तो मिल जाएंगी
1: जी,
0: लेकिन वह रस जो है जो संस्मरण में मिलता है, साहित्यकार के संस्मरण में मिलता है, वो इसमें नहीं मिलेगा। मेरा मानना है कि यात्रा संस्मरण केवल सूचनात्मक नहीं होता है, वो रचनात्मक होता है। वह लोगों को एक दृष्टि देता है, और जो उसको पढ़कर के यात्रा करता है।

0: नमस्कार, मैं रफिया खान।
1: और दोस्तों, मैं आपका साथी दुर्गेश कारपेंटर।
0: आज है 1 जुलाई का दिन, यानी आज 1 जुलाई होने के साथ साथ महीने का पहला युवाणी कार्यक्रम भी है। और है एक ऐसा दिन जब बचपन की शुरुआत हुआ करती थी।

0: बच्चे स्कूल जाते हैं, सभी स्कूल जाते हैं, जो बारिश होती है उसकी भी पहली शुरुआत होती है, और हमारे दिल से एक ही आवाज़ निकलती कि हे कि बारिश थोड़ी थमे ना और हमें स्कूल की छुट्टी मिल जाए और जैसा चल रहा था आराम का जो माहौल था वो वैसा का वैसा बना रहे। लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं था और 1 जुलाई को हम सभी स्कूल जाते थे। हालांकि इस साल 1 अप्रैल को स्कूल खुल गए थे, लेकिन फिर भी बीच में छुट्टियां तो आई और फिर से इस जुलाई महीने में हमारे स्कूल की शुरुआत हो गई।
1: रविया, वास्तव में जो आप बता रही है कि जब हम स्कूल जाया करते थे तो, और जब बारिश का समय स्कूल का टाइम होता, हम कंप्लीट तैयार हुआ हो जाया करते थे, हमारी माँ जो हमें तैयार करती कर देती थी, टिफिन तैयार हुआ करता था, उसके बाद अगर वास्तव में बारिश की बूंदें आए तो हमें लगता था कि ये बारिश अब थमे ही ना, क्योंकि फिर से हमें स्कूल जाने का जो वो डर था, हमें थोड़ी सी तनाव भी उस समय हुआ करता था। हालांकि आज के समय में जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वे बेफिक्र हो चुके हैं, क्योंकि आज की जो शिक्षा है वहाँ आसान है और इसके साथ ही जो टीचर्स हैं वहाँ भी सपोर्टिव हो चुके हैं।
0: तो दोस्तों ये बातें सुन के थोड़ा तो आपके मन में आया होगा और आपकी जो पुरानी यादें हैं वो थोड़ी ताज़ा हो गई होंगी इस जुलाई के महीने को लेकर। और इसी के साथ जो ये पुरानी आदतें थी हमारी, और हम जिस तरह से स्कूल जाया करते थे, हम पूरे पंक्चुअल थे, सुबह जल्दी उठा करते थे, अपना ध्यान रखा करते थे, अपने सारे कामों को टाइम पर किया करते थे, उसी तरह से युवा अवस्था में भी हमें अपने बचपन से सीख लेनी है और हर चीज़ को टाइम पे करना है। और हाँ, ये जो युवाणी का साथ है और ये जो 1 जुलाई तारीख है। नमस्कार, मैं रफिया खान।
1: और दोस्तों मैं आपका साथी दुर्गेश कारपेंटर।
0: आज है 1 जुलाई का दिन, यानी आज 1 जुलाई होने के साथ साथ महीने का पहला युवाणी कार्यक्रम भी है। और है एक ऐसा दिन जब बचपन की शुरुआत हुआ करती थी, हमारे जितने भी फॉरेस्ट हैं उनकी इम्पोर्टेंस समझने के लिए, वो जितना भी पॉल्यूशन हमारे यहाँ पर क्रिएट हो रहा है उनको अपने आप में समाहित करते हैं और हमें शुद्ध हवा देते हैं, और इनका सुरक्षा और इनको सहेज के रखना हमारी जिम्मेदारी है। इसके बाद में हम बात करेंगे डॉक्टर B.C. राय जयंती की और उनकी पुण्यतिथि की, और ये बेहद ख़ास बात है कि इनकी जयंती और पुण्यतिथि दोनों एक दिन है, तो इसमें कार्यक्रम में आगे चर्चा जारी रहेगी।
1: इसके साथ ही दोस्तों हम आपसे चर्चा करेंगे पुरुषोत्तम दास टंडन जी की पुण्यतिथि के बारे में। इसके साथ ही हम और हमारा पर्यावरण के अंतर्गत हम आपसे बात करेंगे कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज यानी CCUS टेक्निक के बारे में।
0: इसके बाद आपको लिए चलेंगे चिराग जल रहे हैं युवा डायरी की तरफ,
1: जिसमें हम आपको सुनाएंगे जेबा जी से रफिया की बातचीत,
0: और इसके बाद जानकारी देंगे राष्ट्रीय प्रोत्साहन योजना की यानी NAPS की।
1: इसके साथ ही कार्यक्रम में होगा दोस्तों आज का इतिहास, तो कहीं ना जाइएगा दोस्तों, सुनते रहिए हमारा कार्यक्रम युवाणी।

0: दोस्तों, जुलाई का महीना जैसा स्टूडेंट्स के लिए तो स्टार्ट हो ही जाता है, लेकिन जुलाई का महीना कुछ और भी लेकर आता है, यानी कि यह कर देता है मानसून की शुरुआत।
1: बारिश

बड़े वन हैं, उनको हम सुरक्षित भी रख सकें। ये भी हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि एक पेड़ माँ के नाम तो हम मान लेते हैं और लगा भी देते हैं और हमारी जिम्मेदारी है, अच्छी चीज़ भी है, लेकिन जो पेड़ हमारे पास में ऑलरेडी मौजूद है, जो वन संपदा हमारे पास में पहले से बनी हुई है, उनको बचाए रखना भी हमारी ही

0: कचरे से खाद बनाकर हम बगीचे में इस्तेमाल कर लेते हैं उसको।
1: जी मैम, अब बताइए कि बच्चों को पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा देने के लिए आप किस तरह से प्रयास कर रही हैं और किस तरह एक गृहिणी रहते हुए अपने बच्चों को पहले से ही इस चीज के लिए तैयार किया जा सकता है।
0: मैम, इसके तो बहुत सारे यूज हैं। हम जैसे खुद करते हैं ऐसे हमारे बच्चों को सिखाते हैं। जैसे हम पौधे लगाते हैं तो बच्चों को साथ में खड़ा करते हैं, उन्हें साथ में बताते हैं कि भाई पौधे तोड़ने नहीं चाहिए, पौधे किस तरीके से लगाए जाते हैं, ताकि उनको भी पेड़ पौधों की अहमियत

0: ने देखा है कि घरों में अलग अलग तरह की जो चीज़ें होती हैं, लिक्विड्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, उनका यूज़ किया जाता है सफाई के लिए, और वो रासायनिक होती हैं। अगर वो किसी कीड़े को या किसी भी जर्म को नुकसान पहुंचा सकती हैं, तो वो केमिकल्स हैं, वो हमें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और वो पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो किस तरह से हम रासायनिक क्लीनर की जगह प्राकृतिक विकल्प का चुनाव कर सकते हैं?
1: यस मैम, आपने तो ये बहुत अच्छा सवाल

0: जेबा से रफिया की बातचीत। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आई होगी।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
0: दोस्तों, आज हम याद कर रहे हैं पुरुषोत्तम दास टंडन जी को, क्योंकि आज के दिन हम उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं।
2: आज 1 जुलाई है और आज है महान स्वतंत्रता सेनानी भारत रत्न राष्ट्रीय पुरुषोत्तम दास टंडन जी की पुण्यतिथि। हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने में उनका एक अद्वितीय योगदान है। इन्हें राष्ट्रीय की उपाधि भी से भी सम्मानित किया गया है।
0: 1961 यानी 1961 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान

0: दोस्तों, हम और हमारा पर्यावरण में हम लेकर आए हैं CCUS टेक्निक के बारे में जानकारी।
1: हाल ही में जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले दुष्प्रभावों को हमने देखा है। गर्मी बढ़ती जा रही है, असमय बारिश कभी भी आ जाती है, चक्रवात आ जाते हैं, तूफान आ जाते हैं और ऐसी जो स्थितियां हैं वो अब स्वाभाविक सी बनने लगी हैं। लेकिन ऐसी स्थितियों को तब हम कम कर सकते हैं जब जलवायु परिवर्तन को हम रोक सकें।

0: तो आप जानकारी के रूप में हमने शामिल किया है आज राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना यानी NAPS के बारे में। यह योजना भारत सरकार द्वारा युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने और उन्हें व्यवहारिक प्रशिक्षण यानी ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक प्रमुख कौशल विकास योजना साबित हो रही है।
1: सरकार द्वारा नियोक्ताओं को प्रशिक्षित किया जाता है, उन्हें शिक्षा दी जाती है, निर्धारित जो स्टेप क्रेडिट है उनको 25% हिस्सा इसमें दिया जाता है, अधिकतम 1500 रुपए प्रति माह इनको दी जाती है और इसके अलावा मूल प्रशिक्षण जो है इसकी लागत में जो इनका हिस्सा होता है वो भी इन्हें सरकार द्वारा दिया जाता है।
0: दोस्तों, हम और हमारा पर्यावरण में हम लेकर आए

केंद्र सरकार ने आज कई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय

बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। श्री शाह ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।

गीतों के इसी क्रम में आइए सुनते हैं अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा रेखा भारद्वाज और तोची रैना की आवाज़ में, संगीत दिया है प्रीतम ने और फिल्म है ये जवानी दीवानी।

0: के जीवन को सुविधाजनक और बेहतर भी बनाती है। इसी सोच के साथ हमने राज्य में राजस्थान एआई एमएल पॉलिसी 2026 लागू की है। इस नीति से एआई का उपयोग प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि एवं उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रूप से करने का आधार तैयार हुआ है।
1: मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर स्मार्ट परियोजना, ई मित्र, व्हाट्सएप सेवा और राजस्थान इनोवेशन चैलेंज का शुभारंभ किया। इससे पहले श्री शर्मा ने तकनीकी सेवाओं पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन कर अवलोकन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। इस दौरान श्री शर्मा ने बताया कि राज्य को डेटा सेंटर क्षेत्र में 43,000 करोड़ रूपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इनमें एसटीटी, जीडीसी, एचजी एकाया, नायो बोल्ट सहित कई नामी कंपनियां शामिल है। प्रदेश के आईटी और उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि आज तकनीकी नवाचारों से न्यूनतम सरकार और अधिकतम सुशासन की बात सार्थक हो रही है।
2: हर सेक्टर के अंदर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल टेक्नोलॉजी का महत्व है और इसीलिए जो जनधन आधार और मोबाइल को जोड़ा गया उससे जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है उसके अंदर लीकेजेस खत्म हो गए। आज यूपीआई जो पहले मजाक बनाया जाता था आज यूपीआई गांव-गांव में हो रहा है। एक महीने के अंदर तकरीबन 23 बिलियन ट्रांजेक्शन से ज्यादा हो रहे हैं। कौन से नए तरीके अपनाए जा सकते जो दूसरे राज्यों में

0: भी बढ़ती है, इसमें भी हम लिखेंगे जो परंपरागत रूप से सफाई का काम कर रहे हैं उसको प्राथमिकता देने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा भी दो तीन इश्यूज थे, उन सब इश्यूज को भी हमने टेकअप किया है।
1: सफाई कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष नंदकिशोर डंडोरिया ने वार्ता को सकारात्मक बताते हुए कहा कि जल्दी ही हड़ताल समाप्त करने के बारे में औपचारिक निर्णय लिया जाएगा। राज्य में अगले दो दिनों में मॉनसून के आगमन की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून राज्य के पूर्वी हिस्से से प्रवेश कर सकता है। मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून के सक्रिय होने से कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के आसार हैं। वहीं 6 जुलाई तक प्रदेश के अधिकतर भागों में बरसात शुरू होने की उम्मीद है। इस बार मॉनसून की दस्तक करीब 8 दिन देरी से होने की संभावना है। हालांकि विभाग ने इस बार जुलाई महीने में प्रदेश में सामान्य से कम बारिश का अनुमान जताया है। इस बीच मॉनसून के प्रवेश से पहले प्री मॉनसून गतिविधियां कुछ भागों में सक्रिय है। बीते 24 घंटों में कोटा, उदयपुर और भरतपुर संभाग में हल्की से मध्यम बरसात हुई। जैसलमेर में आज धूल भरी आंधी चली। भरतपुर में सुबह पानी बरसने के बाद

0: 145 करोड़, और उसके आगे वाले सेक्शन का भी उसमें बहुत सारा इम्प्रूवमेंट है, एक्सेस कंट्रोल करना, उसकी वाइडनिंग इम्प्रूवमेंट, वो सब भी उसमें इंक्लूडेड है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा 4 जुलाई ने प्रस्तावित राजस्थान दौरा न ध्यान रखता थका तैयारियां जोर शोर चल रही है। श्री मोदी रो बालोतरा रा पचपदरा माए देश री पहली ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड HPCL राजस्थान रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स ने जनता ने सौंपण रो कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री जोधपुर हवाई अड्डा रा नुआ टर्मिनल रो ही उद्घाटन करेला। माणा बालोतरा खबर नवीस बतायो कि प्रधानमंत्री रा दौरा ने यादगार बनावण और हरित विकास री अलख जगावण सारू मोटा पैमाना माथे पौधा रोप्या जा रहा है।
2: 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ जहां पचपदरा रिफाइनरी की सौगात देंगे, वहीं इस दिन को ऐतिहासिक और यादगार बनाने के लिए जिला प्रशासन ने नई पहल करते हुए जिले में वृहत स्तर पर पौधरोपण अभियान चलाया जाएगा। पौधरोपण के इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए वन विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति एक नया संदेश देना है। बंसीलाल चौधरी, आकाशवाणी समाचार, बालोतरा।
1: समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक माथे AIR News राजस्थान पर आई सुन सको हो। इंसा गई आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in माथे समाचार सुन सको हो और वहां जुड़िया फोटो और वीडियो देख सको हो। गृहमंत्री अमित शाह आबादी बदलावां रा बारा माय बनाई ची आला दर्जारी समितियों सिफारिशां बेगी देवन सारू कहो है। वे आज नई दिल्ली माय समिति रा रिटायर्ड जज न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नाव लेकर री सदारत माय आ समिति बनाई ची ही। प्रदेश रा सगला आंगनवाड़ी केंद्र माय आज खिलौना बैंक शुरू करी चिया। इसा गई प्रवेशोत्सव और पौधारोपण रा कार्यक्रम ही राखी चिया। महिला और बाल विकास विभाग री शासन सचिव पूनम जयपुर रा गौतम नगर आंगनबाड़ी केंद्र माय खिलौना बैंक री शुरुआत कीनी। ई मौके बच्चा ने प्रवेश किट ई दिया चिया। नंद घर योजना रा तहत पारंपरिक आंगनबाड़ी केंद्रा ने और बेहतर बनाया जा रहा है। पालीरा महिला और बाल विकास अधिकारी प्रकाश पंवार बतायो कि जिला रा 222 आंगनबाड़ी केंद्रा ने नंद घर माय बदलीकरण रो काम पूरो वेक्यो है।
3: जिले में 222 मंदिरों का निर्माण किया गया है। बाला पेंटिंग, आरओ, एलईडी, भवन की मरम्मत, शौचालय संबंधी निर्माण आदि कार्य करवाए गए हैं। जो विभाग के लाभार्थी है, गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको जो विभागीय सुविधा अच्छी गुणवत्ता के साथ मिलना सुनिश्चित। अभी और भी इसमें प्रगति रहता है जिसमें और केंद्रों को भी नंदगढ़ में चयनित किया जा सकेगा।
1: स्वायत्त शासन विभाग रा सचिव और सफाई कर्मचारी यूनियन रा नुमाइंदा बीच आज जयपुर माय बातचीत हुई। इन दौरान यूनियन री कुछ मांगा माथा एक राय बनी। विभाग रा सचिव रवि जैन खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका बतायो कि सरकार री ओर कुछ मांगा मान लिया पाछे सफाई कर्मचारियां रा संगठन दूजी मांगा न लेर अड़ रहा है। वह कहो कि सफाई कर्मचारियां री भर्ती माय

0: यह है। महान चिकित्सक, स्वतंत्रता सेनानी और पश्चिम बंगाल रा पहले वाला मुख्यमंत्री डॉक्टर बीसी राय री याद माए ओ दिन मनायो जावे है। इन दिन इलाज रा हल्का माए डॉक्टर रा समर्पण, सेवा भावना और इंसानियत रा प्रति योगदान रो मान करियो जावे है। जयपुर रा SMS मेडिकल कॉलेज री एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अदिति इलाज रा पेशा न सेवा सागे खुद न संतुष्टि देवन वालो बतायो।
1: डॉक्टर्स डे के इस विशेष अवसर पर आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं एक लैब मेडिसिन डॉक्टर हूं। आप हमसे अस्पताल में सीधे न मिलते हो, लेकिन आपकी जांच की हर रिपोर्ट के पीछे हमारी पूरी टीम की मेहनत, जिम्मेदारी और ईमानदारी होती है। जब किसी मरीज का सही समय पर सही निदान हो जाए, उसका इलाज शुरू हो जाए और वह स्वस्थ होकर अपने
0: समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक मत है AIR न्यूज राजस्थान पर आई सुन सको हो। इंसा गई आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in मत है समाचार सुन सको हो और वहां जुड़िया फोटो और वीडियो देख सको हो। गृह मंत्री अमित शाह आबादी बदलावां रा बारा माय बनाई ची आला दर्जारी समितियों सिफारिशां बेगी देवन सारू कहो है। वे आज नई दिल्ली माय समिति रा वन रा आसार उगनी हलकाऊं बिरखा सरूफे वन री संभावना। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भियो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल सवारे 9 बजा हिंदी माय प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
2: तो 3.2 MHz पर यह आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है। शाम के 7 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम कृषक चौपाल।

कृषक चौपाल सुन बड़ा सभी किसान भाई बहनों के ताई आपका भाई अमरलाल सुमन को राम राम। किसान भाई आवा बार आपने जो बुआई छे बुआई को समय चाल रही छे और ये बार तो जो बुआई छे वह सभी जगह अलग अलग बुआई हो रही छे। यहाँ थोड़ा सा एरिया में कब बरस गयो वहाँ बुआई हो रही छे पर एक पाचक कारण छे के जो पर्यावरण छे पारिस्थितिक तंत्र छे वो गड़बड़ायु छे। और अपना वैज्ञानिका ने पहले ही बता दीजिए कि भाई ई बार बारिश की जो छे थोड़ी कमी रहेगी तो ई बार थोड़ी बारिश की कमी भी छे। और यहाँ सब बात आ कताई ध्यान में रखता हुआ आप कताई अपनी बुआई करनी चाहिए। और साथ ही यो जो सप्तो छे 1 जुलाई से 7 जुलाई ताई ई कताई जो छे वन महोत्सव सप्ताह का रूप में मनाई जाओ छे। यो पूरो एक सप्तो रो छे यो जो सप्तो छे यो वृक्षारोपण उत्सव को सप्तो रो छे। इको मुख्य उद्देश्य छे पेड़ पौधा के ताई महत्व वाको महत्व पर्यावरण संरक्षण और वना की कटाई रोकबो और वोका प्रति लोगों के ताई जागरूकता बढ़ाबो। इनकी जो शुरुआत छी वह 1950 में भारत का तत्कालीन केंद्र

0: के बारे में शिक्षित करे जाओ छे और जे पेड़ पौधा छे वह पेड़ पौधा जो पर्यावरण का ताई और पारिस्थितिक तंत्र का ताई मतलब की तरीके से जो छे अनुकूल करे छे ये अपना लेकर कतरा फायदा मंद
1: वन रहा आसार उगनी हलकाऊं बिरखा स्वरूप है वन रही संभावना इसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भियो मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल सवारे 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला नमस्कार।
2: तो 3.2 MHz पर यह आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है। शाम के 7 बज चुके हैं, आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम कृषक चौपाल।

0: और साथ हो आप जानकारी ए जो छे अपना जानकारी भी अपना सुनाओ छे। तो आज अपना जानकारी के जो छे वो छे का खरीफ की जो बुआई छे वो बुआई में अपन काई काई सावधानियां बरता तो महेंद्र जी शर्मा से सुनाइया जानकारी।
1: किसान साथियों, राम राम। किसान साथियों, आज जिस विषय पर हम बात करना चाह रहे हैं उस विषय का नाम है खरीफ

जिन खेतों में पानी भरा रहता है, जहाँ पर पानी की जल ठहराव होता है, वहाँ की जो ज़मीन की जो दशा है, भौतिक दशा है, वो ख़राब हो जाती है। तो हमें ये भी ध्यान में रखना है कि जिन खेतों में जल भराव की समस्या है, वहाँ पर बुआई नहीं करें। इसके साथ साथ किसान साथियों, आगे एक और महत्वपूर्ण सलाह है कि

जिन खेतों में पानी भरा रहता है, जहाँ पर पानी की जल ठहराव होता है, वहाँ की जो ज़मीन की जो दशा है, भौतिक दशा है, वो ख़राब हो जाती है। तो हमें ये भी ध्यान में रखना है कि जिन खेतों में जल भराव की समस्या है, वहाँ पर बुआई नहीं करें। इसके साथ साथ किसान साथियों, आगे एक और महत्वपूर्ण सलाह है कि

सा सुने अपन लोकगीत और साथिया हूँ। बारिश को मौसम छे तो निश्चित रूप से अपन कहता है कीड़ा कांटा से बचर रहनी चाहिए जी। और साथिया हूँ आज आपने जो जानकारी की बात छे उम छे मिट्टी परीक्षण और उनका लाभ, तो साथिया हूँ आपने जो खेती कर रहे चा काफ़ी पुस्तान से खेती करता आ रहे चा और उनके बावजूद भी आज आपने जो धीरे धीरे जो जमीन की उर्वरकता क्षमता जी उनको स्वास्थ्य छो वो स्वास्थ्य खराब हो गयो और आपनों उत्पादन घट रो और लागत बढ़ती जा रही है। तो उनके पाचे कारण यही है कि कहीं न कहीं आपन जो मिट्टी छे वो मिट्टी के साथ में काफ़ी कुछ जो छेड़खानी करी छे और उनको परिणाम छे कि अपनी अच्छी उपज न मिल रही और उनको नुकसान आपन उठाने चाह। तो इको सबसे बढ़िया उपाय यही है कि जिससे आप बीमार हो चाहे डॉक्टर के पास में जाओ चाहे डॉक्टर आपन से पूछे चे भाई कहीं कहीं आपका लक्षण चर में अनुसार आपने कहता है अपनी जाँचा लिखे और जाँचा लिखकर फिर वहाँ जाँचा के अनुसार अपने कहता है दवाई दे चे।

उदित नारायण के स्वर में आप सुन रहे थे और प्यार हो गया फिल्म का गाना, जावेद अख्तर के बोल थे। ये थी आज के जयमाला कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। अब दीजिए इजाजत। जय हिंद।

राग पीलू पर आधारित ये गीत आपने सुना शहनाई फिल्म से मोहम्मद रफी के स्वर में। और आइए अब आपको सुनवाते हैं राग जय जयवंती पर आधारित फिल्म सीमा का ये गाना। लता मंगेशकर की आवाज है, बोल शैलेंद्र के हैं, संगीत शंकर जय किशन का है।

0: आज के हवा महल कार्यक्रम में झलकी आपके लिए लेकर आए हैं दिवा
1: आज पे कोई।
2: और तुम्हारे पति परमेश्वर? अच्छा, लंच लेकर थोड़ी देर आराम कर रहे हैं। अरे बड़े भाग्यवान हो सुषमा, यहाँ तो अभी तक अपने उनके इंतजार में बैठे सूख रहे हैं। देख लो ना, 2 बज गए हैं। अरे नहीं रे, 1 दिन की बात नहीं, ये तो रोज की कहानी है। रोज ही खाने के लिए घर आते इनको 2-3 बज जाते हैं। नहीं नहीं, मैं बढ़ा चढ़ा कर बिल्कुल नहीं कह रही हूं। हाँ, शायद तुम ठीक ही कह रही हो।

0: और तुम्हारे पति परमेश्वर? अच्छा, लंच लेकर थोड़ी देर आराम कर रहे हैं। अरे बड़े भाग्यवान हो सुषमा, यहाँ तो अभी तक अपने उनके इंतजार में बैठे सूख रहे हैं। देख लो ना, 2 बज गए हैं। अरे नहीं रे, एक दिन की बात नहीं, ये तो रोज की कहानी है। रोज ही खाने के लिए घर आते इनको 2-3 बज जाते हैं। नहीं नहीं, मैं बढ़ा चढ़ा कर बिल्कुल नहीं कह रही हूं। हाँ, शायद तुम ठीक ही कह रही हो कि ये दोनों हाथों से लक्ष्मी बटोर रहे हैं, मगर मैं पूछती हूँ सुषमा, इस लक्ष्मी की जरूरत किसे है? पैसे के लिए इतनी हाय हाय क्यों? मेरे लिए? तुम भी मुझे गलत समझ रही हो सुषमा, आवश्यकता से अधिक मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मैं तो चाहती हूँ ये भी मेरी तरह संतोष रखें और जितना जरूरी हो उतने ही हाथ पांव मारें। काम काम, जब देखो काम, काम के पीछे अपने आप को मिटा देने का इरादा है क्या? पता नहीं इनके मन में पैसे के लिए इतनी लिप्सा क्यों जाग गई है। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं इस पैसे को लेकर क्या करूंगी? क्या कह रही हो तुम? अरे एक बार नहीं, 50 बार कह चुकी हूं, आए दिन इसी बात को लेकर झगड़ा होता है। अरे एक भी नहीं सुनते मेरी। क्या? छोड़ भी, न प्यार न डांट फटकार, इन पर किसी चीज का असर नहीं होता। चिकने घड़े हैं ये। सुषमा, शायद वो आ गए, किसी की आहट आई है। अच्छा, शाम को फोन करूंगी।
1: अरे मैंने कहा फोन से छुट्टी मिल गई हो तो आपसे प्रार्थना की जाए कि इस नाचीज की तरफ भी ध्यान दीजिए।
0: क्या ध्यान दूं आपकी तरफ? आरती का थाल लाऊं सजाकर आपके लिए? 2:30 बज रहे हैं, अब तो मंदिर में भी भगवान के शयन का समय हो गया है।
1: बस इतने ही व्यंगबाण हैं आपके पास? कुछ और भी तो जलीकटी सुनाइए। सुबह से निकले थके मांदे आदमी के दिन में घर लौटने पर क्या इससे ज्यादा स्वागत उसका नहीं किया जा सकता?
0: जरूर किया जा सकता है। हाँ, आप तो इससे ज्यादा स्वागत के अधिकारी हैं।
1: तो फिर रुक नहीं, जो कुछ आपके मन में है उसे बाहर ले आइए, कोई कसर नहीं रहनी चाहिए।
0: कसर तो आपने नहीं छोड़ी है कोई, एक दिन हो 2 दिन हो, मगर यहाँ तो हफ्ते और महीने निकलते जा रहे हैं और आपके रूटीन में इंच भर का फर्क नहीं आ रहा है। सुबह भागते भागते नाश्ता करते हैं, दिन का खाना खाने के लिए आपको 3 बजे घर आने की फुर्सत मिलती है। खाना दिन में कई बार ठंडा होता है, कई बार गर्म होता है। मेरी एक आंख दरवाजे पर रहती है, दूसरी घड़ी पर। एक कान दरवाजे की घंटी पे लगा रहता है, दूसरा फोन पर।

0: भाग्य का ये कितना बड़ा व्यंग है।
1: उषा, ये कुछ ही दिनों की तो बात है, एक बार काम चल निकलेगा तो फिर मुझे अवकाश ही अवकाश रहेगा। फिर तो सारा समय तुम्हें और घर को ही दूंगा मैं।
0: ये दिन हफ्तों में बदल जाएंगे, हफ्ते महीनों में और महीने वर्षों में, और आपको कभी अवकाश नहीं मिल पाएगा। एक समस्या मिटेगी तो दूसरी नई समस्या आ खड़ी होगी, वो खत्म होगी तो एक बिल्कुल ही नई समस्या आपको घेर लेगी, और आपका जीवन कोल्हू के बैल की तरह एक निश्चित दायरे में गोल गोल घूमता जाएगा।
1: तुम मुझे कोल्हू का बैल कहती हो उषा? मेरे ऊपर उठने की आकांक्षाओं का मजाक उड़ाती हो?
0: आपके जीवन में कुछ करने या ऊपर उठने की

0: भाग्य का ये कितना बड़ा व्यंग है।
1: उषा, ये कुछ ही दिनों की तो बात है, एक बार काम चल निकलेगा तो फिर मुझे अवकाश ही अवकाश रहेगा। फिर तो सारा समय तुम्हें और घर को ही दूंगा मैं।
0: ये दिन हफ्तों में बदल जाएंगे, हफ्ते महीनों में और महीने वर्षों में, और आपको कभी अवकाश नहीं मिल पाएगा। एक समस्या मिटेगी तो दूसरी नई समस्या आ खड़ी होगी, वो खत्म होगी तो एक बिल्कुल ही नई समस्या आपको घेर लेगी, और आपका जीवन कोल्हू के बैल की तरह एक निश्चित दायरे में गोल गोल घूमता जाएगा।
1: तुम मुझे कोल्हू का बैल कहती हो उषा? मेरे ऊपर उठने की आकांक्षाओं का मजाक उड़ाती हो?
0: आपके जीवन में कुछ करने या ऊपर उठने की महत्वाकांक्षाओं का नहीं, मैं दिवा स्वप्न देखने की आपकी आदत का मजाक उड़ाना चाहती हूँ।
1: मैं दिवा स्वप्न देखता हूँ?
0: हमारा विवाह हुए 14 वर्ष हो चुके हैं और आपने अभी तक दिवा स्वप्न देखने के अलावा कुछ नहीं किया है। यदि इस बीच में स्कूल की नौकरी ना करती होती तो शायद हम लोग भूख से मर गए होते। कर्जदार तो खैर हम हो ही गए थे।
1: तो क्या इन 14 वर्षों में मैंने कोई उद्यम, कोई कोशिश नहीं की है?
0: की है, मगर आपकी सारी कोशिशें असंभव को संभव बनाने की थी, इसीलिए आप असफल रहे। आपने कभी कोई ऐसा काम हाथ में नहीं लिया जो आपकी शक्ति और आपके साधनों की पहुंच के अंदर होता। आपने किसी छोटे काम में हाथ नहीं डाला, आपने वही प्रोजेक्ट हाथ में लिए जिनमें सैकड़ों नहीं हजारों और लाखों रुपए पाने के सपने छिपे थे, और क्योंकि उन सपनों की नींव मजबूत नहीं थी इसीलिए जल्दी ही वे सपने आकाश से नीचे आ गए। उसी निर्दय निर्मम स्थिति पर जहां गिरगांव रोड की हमारी वो अंधेरी, तंग और सीलनदार खोली थी, जहां दिन में भी कॉकरोच घूमते रहते थे।
1: हर महत्वाकांक्षी व्यक्ति को शुरू में थोड़ी बहुत असफलता मिलती है, उससे निराश होकर वो हाथ पर

0: भाग्य का ये कितना बड़ा व्यंग है।
1: उषा, ये कुछ ही दिनों की तो बात है, एक बार काम चल निकलेगा तो फिर मुझे अवकाश ही अवकाश रहेगा। फिर तो सारा समय तुम्हें और घर को ही दूंगा मैं।
0: ये दिन हफ्तों में बदल जाएंगे, हफ्ते महीनों में और महीने वर्षों में, और आपको कभी अवकाश नहीं मिल पाएगा। एक समस्या मिटेगी तो दूसरी नई समस्या आ खड़ी होगी, वो खत्म होगी तो एक बिल्कुल ही नई समस्या आपको घेर लेगी, और आपका जीवन कोल्हू के बैल की तरह एक निश्चित दायरे में गोल गोल घूमता जाएगा।
1: तुम मुझे कोल्हू का बैल कहती हो उषा? मेरे ऊपर उठने की आकांक्षाओं का मजाक उड़ाती हो?
0: आपके जीवन में कुछ करने या ऊपर उठने की
1: क्या, इन 14 वर्षों में मैंने कोई उद्यम कोई कोशिश नहीं की है?
0: की है, मगर आपकी सारी कोशिशें असंभव को संभव बनाने की थी, इसीलिए आप असफल रहे। आपने कभी कोई ऐसा काम हाथ में नहीं लिया जो आपकी शक्ति और आपके साधनों की पहुंच के अंदर होता। आपने किसी छोटे काम में हाथ नहीं डाला, आपने वही प्रोजेक्ट हाथ में लिए जिनमें सैकड़ों नहीं हजारों और लाखों रुपए पाने के सपने छिपे थे।

0: तुमने क्या किया उषा?
1: मैंने जो भी किया ठीक किया। भूल गए अभी अभी अजय भाई ने क्या कहा था, उतावला सो बावरा और धीरा सो गंभीरा। हम लोग कोई छोटा काम करेंगे और धीरज के साथ उसके परिणाम की प्रतीक्षा करेंगे। एक महीने में लखपति बनने की मिथ्या आशा में हम अपने जीवन को नष्ट नहीं करेंगे। हम अपने जीवन को संवारेंगे, सुधारेंगे, ताकि हमारे बच्चे ईमानदार और परिश्रमी बन सकें। और हमें चाहिए भी क्या?
0: तुम ठीक कहती हो उषा, तुम ठीक कहती हो।

दिवा स्वप्न, ये झलकी अभी आपने सुनी। लेखक मनुभाई देसाई, निर्देशक सत्येंद्र शरत। अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय

अभी आपने ट्यून किया है आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं फिल्म गजनी से प्रसून जोशी का लिखा और AR रहमान का संगीतबद्ध किया, जावेद अली और सोनू निगम की आवाज़ में ये गीत।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आज का सपना
1: अच्छी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: आइए सुनते हैं जावेद अली और इरशान अशरफ और शादाब की आवाज़ में शायद कादरी का लिखा और प्रीतम का संगीतबद्ध किया फिल्म तुम मिले से ये गीत।

फिल्म संगीत में ये सुनते हैं अगला गीत। फिल्म है आजा नचले, रचना है जयदीप सैनी की, संगीत है सलीम सुलेमान का, आवाज़ है राहत फतेह अली खां की।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। FM 103.2 MHz पर यह आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है। आइए सुनते हैं कुछ ही देर में आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से अनुप्रसारित समाचार संध्या।

0: 80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
1: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है, बीच में आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबरई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा कंप्लीट, एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा तीन जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
0: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी है। एक रिपोर्ट।
2: वीबीजी रामजी योजना के अंतर्गत अब देश में कहीं भी तय की गई प्रतिदिन की मजदूरी 300 रुपए से कम नहीं होगी, जिससे राष्ट्रीय औसत मजदूरी 298 रुपए 80 पैसे प्रतिदिन से बढ़कर 327 रुपए 40 पैसे प्रतिदिन हो जाएगी। यह मजदूरी में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी को दिखाता है। इस कानून को पूरे देश में लागू करने के अवसर पर कल आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में वीबीजी रामजी की औपचारिक शुरुआत, लाभार्थियों को ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड का वितरण, वीबीजी रामजी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का लॉन्च, अहम प्रकाशनों को जारी करना, लाभार्थियों के साथ बातचीत और कानून को असरदार ढंग से लागू करने के उद्देश्य से कई पहलुओं का उद्घाटन शामिल होगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। गृह मंत्री ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों

0: जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत और पाकिस्तान ने आज एक दूसरे की हिरासत में मौजूद सिविल कैदियों और मछुआरों की सूचियों का आदान प्रदान किया। भारत ने अपनी हिरासत में मौजूद 386 कैदियों और 53 मछुआरों की सूचियां साझा की। पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में मौजूद 52 कैदियों और 198 मछुआरों की सूचियां साझा की। भारत ने 188 भारतीय नागरिकों की रिहाई और 13 लोगों तक कौंसिलर पहुँच की मांग की। भारत ने पाकिस्तान के फरुखाबाद में 125 वर्ष पुराने पवित्र गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को ध्वस्त किए जाने की कड़ी निंदा की है। भारत ने इसे अत्यंत निंदनीय और बर्बरता का कृत्य बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों को निशाना बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार ने आज देश में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू करने के संबंध में मेटा को नोटिस जारी किया है। सूत्रों के अनुसार सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा को 3 दिनों के भीतर यूजर नेम फीचर के बारे में विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉ. साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। 4 जुलाई तक तटीय कर्नाटक, गुजरात क्षेत्र, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और विदर्भ में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच मुंबई में कल से तेज वर्षा हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने 5 जुलाई तक कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है।

0: नियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एकरूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM 103.2 MHz पर यह आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है। लीजिए प्रस्तुत है गीत और गजलों का कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कैलाश खेर की आवाज़ में गाए इस गीत से।